0: राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रपति क्रिस्टो डोलाइट्स मुंबई का दौरा कर चुके हैं। उनके साथ विदेश मंत्री डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस काम्बोस, परिवहन, संचार और निर्माण मंत्री तथा व्यापार जगत के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी संयुक्त अरब अमीरात, नीदरलैंड, स्वीडन, नॉर्वे और इटली की सफल यात्रा के बाद स्वदेश लौटे। यात्रा के अंतिम चरण में भारत और इटली ने व्यापार, निवेश और आपूर्ति श्रृंखला की मजबूती के लिए भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारे को और विकसित करने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री मोदी ने बताया कि दोनों देशों के बीच भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की गई।
1: हमने हमारी भावी साझेदारी को और सशक्त बनाने के लिए विस्तृत रूप से चर्चा की। भारत इटली ज्वाइंट स्ट्रेटेजिक एक्शन प्लान 2025-2029 हमारी साझेदारी को एक प्रैक्टिकल और फ्यूचरिस्टिक ढांचा प्रदान करता है। हम इस पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साझा प्रयासों में द्विपक्षीय व्यापार 20 बिलियन यूरो के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रहा है।
0: रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या गतिविधि की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। ये आग्रह कल नई दिल्ली के रेल भवन में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता की ओर इशारा मिला है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। SPG के पास प्रधानमंत्री और उनके साथ आधिकारिक आवास में रहने वाले परिवार के सदस्यों की सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने RG कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुए दुष्कर्म हत्या मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल SIT का गठन किया है। इसका नेतृत्व केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के पूर्वी जोन के संयुक्त निदेशक करेंगे। न्यायालय ने SIT को 25 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है। अदालत का ये फैसला पीड़िता के परिवार की बार बार जताई गई चिंताओं के बाद आया है। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मुज जलडमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही। श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तोशिमित्सू के भाग लेने की संभावना है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में आज तेज लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तर प्रदेश में भीषण गर्मी से हालात लगातार गंभीर है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय सरबजीत कौर। Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulis, in New Delhi today. Mr. Christodoulis arrived in New Delhi yesterday from Mumbai. He was received by Union Minister of State for Road Transport.

महिला सशक्तिकरण क्षेत्र थी नुआपड़ा जिला फेरघाय राज्य सिघान रही है। 2025-26 आर्थिक बछर मिशन शक्ति रिपोर्ट अनुसार एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम थी जिला राज्य पहला ठान पाई 540 एसएचजी लिंकेज लक्ष्य थिबार बेले 6148 एसएचजी बैंक लिंकेज मिली। पानीपाग राज्य भिन्न भिन्न जगान कालबैशाखीर बले वर्षा जारी रही। भुवनेश्वर आंचलिक पानीपाग विज्ञान केन्द्र तरफ मिलता सूचना अनुसार आब 24 घंटा भितर बिजली घड़घड़ी संगे वर्षा हाबा सियाड़े राज्य गुलगुली आ गरम लगी साधारण जनजीवन अस्तव्यस्त हो पड़े। गलाकाल झारसुगुड़ान सबुन उच्च तापमात्रा 45.5 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड कर पश्चिम ओडिशार बड़भागी जगार तापमात्रा 40 डिग्री उपरे रेकर्ड कर सियाड़े संबलपुर झारसुगुड़ा बलांगीर नयगढ़ जिला के जबर खरा लगे पाणीपाग केन्द्र तरफ अरेज वार्निंग जारी कर आंचलिक खबर इन शेष होगा। आरबलर आंचलिक खबर शुनिपारे राति 7:02 थी जुहार।

0: निर्मित नुआ वैष्णवी भवन रे 78 कोठरी रहिछि। मणिपुर पुलिस मुख्य राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय रे सुरक्षा सचिव भाबरे नियुक्त करा जाइछि। कार्मिक मंत्रालय निर्देश अनुजाई कैबिनेट नियुक्ति कमिटी श्री सिंह को कैबिनेट सचिवालय रे सुरक्षा सचिव पदवी रे नियुक्ति को अनुमोदन करिछि। सुरक्षा सचिव हेउछन्ती स्वतंत्र सुरक्षा गोष्ठी एसपीजी प्रशासनिक मुख्य जी प्रधानमंत्री एवं तांको सरकारी बासभवन रे तांको सह रहउथिबा तांको परिवार सदस्य मानंकु सुरक्षा देथान्ती। 1993 बैच त्रिपुरा कैडर आईपीएस अधिकारी श्री सिंह 2023 जून 1 ठारु मणिपुर पुलिस महानिदेशक भाबरे कार्य करुछन्ती। देशरे रेल भित्तिभूमि एवं ट्रेन परिचालना को लक्ष्य करी हेउथिबा आक्रमण परिप्रेक्षी रे रेल मंत्रालय यात्री मानंकु सतर्कता अवलंबन करिबा लागि परामर्श देछि। गतकाली नुआदिल्ली रेल भवन रे विभागीय मंत्री अश्विनी वैष्णवंक अध्यक्षता रे अनुष्ठित उच्चस्तरीय बैठक परे एही परामर्श दिया जाइछि। रेल यात्रा समय रे एवं रेलबाई परिसर मध्य रे जेकोनोसी संदिग्ध कार्यकलाप किंबा संदिग्ध व्यक्तिंक संपर्क रे तुरंत सहायता नंबर 139 को कॉल करी रिपोर्ट करिबाकु रेलबाई यात्रीमानंकु अनुरोध करिछि। बैठक रे रेल विभागर समयोचित पदक्षेप केतक बड़ दुर्घटनाकु रोकिबारे सफल होइथिबा कुआ जाइछि। रेलमंत्री अश्विनी वैष्णव कहिछन्ति आधुनिक प्रजुक्ति विद्या उपकरण व्यवहार करी तथ्य संग्रह व्यवस्था को सुदृढ़ करा जाउछि। पेरिस रे गतकाली अष्टम भारत फ्रांस सामुद्रिक सहयोग बैठक अनुष्ठित होईछि। जातीय सुरक्षा परिषद सचिवालय रो उपजातीय सुरक्षा परामर्शदाता पवन कपूर एवं फ्रांस रो सशस्त्र बाहिनी मंत्रालय रो आंतर्जातिक संपर्क और रणनीति निर्देशक गुइलाम ओलांगनियर एवं यूरोप वैदेशिक व्यापार मंत्रालय रो सुरक्षा निर्देशक क्लेयर राउलिन बैठक रे सहअध्यक्षता करथिले। आलोचनारे जलदस्यु सशस्त्र डकायती सामुद्रिक आतंकवाद निशा कारबार समेत अन्यान्य गुरुत्वपूर्ण प्रसंग उपरे आलोचना करा सह अवैध सामुद्रिक कार्यकलापर मुकाबला लागि प्रतिबद्धता प्रकाश पाइथिला। तृणमूल स्तररु प्राकृतिक विविधतार संरक्षण आरंभ करिबा लागि सचेतनता सृष्टि उद्देश्यरे आजि आंतर्जातिक जैव विविधता दिवस पालन कराउछि। केन्द्र परिवेश जंगल और जलवायु परिवर्तन राष्ट्रमंत्री कीर्तिवर्धन सिंह एक वीडियो वार्ता कहते जैव विविधतार सुरक्षा केवल विश्वस्तरीय प्रतिबद्धता नुहे बरं समस्त नागरिक अनुष्ठान और सरकार दायित्व। चलित बर्षर विषयवस्तु रही विश्व प्रभाव पर स्थानीय अंचल कार्य करने। आईपीएल क्रिकेट रे गतकाली अहमदाबाद रो नरेंद्र मोदी स्टेडियम रे अनुष्ठित मैच रे गुजरात टाइटन्स 99 रन ने चेन्नई सुपर किंग्स को परास्त करिछि। प्रथमे बैटिंग करी गुजरात टाइटन्स 20 ओवर रे 4 विकेट हराई 229 रन करिथिला। एहार जवाब रे चेन्नई सुपर किंग्स 13 ओवर 4 टी बॉल रे समस्त विकेट हराई 140 रन करिथिला। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द मैच घोषणा करा जायथिला। आज हैदराबाद रो राजीव गांधी आंतर्जातिक स्टेडियम रे संध्या 7:30 मिनिट रे सनराइजर्स हैदराबाद एवं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु मध्य रे मैच अनुष्ठित हेबो। मुख्य संवाद पुनी थरे द्विपाक्षिक सहयोग सुदृढ़ करबा नै साइप्रस राष्ट्रपति सह आज बैठक करिवे प्रधानमंत्री मोदी। भारतर आवश्यकता अनुजाई ईंधन विक्रय लागि अमेरिका प्रस्तुत थिबा कहिछन्ति वैदेशिक मंत्री मार्क रुबियो। पुलवामा आतंकवादी आक्रमणर मुख्य अभियुक्त हमजा बुरहान निहत। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज छात्री मृत्यु मामलें सीबीआई स्वतंत्र तदंतकारी दल गठन करने को कोलकाता हाइकोर्ट का निर्देश। एवं आईपीएल क्रिकेट रे गतकाली अनुष्ठित मैच रे चेन्नई सुपर किंग्स को 99 रन ने परास्त करिछि गुजरात टाइटन्स। संवाद शेष हला।
1: ଏତେବେଳେ ଯାଏଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କଲୁ ଆକାଶବାଣୀ କଟକ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ଅଭିଯାନ ଉପରେ ଆଧାରିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଜୀବନ। ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ କୁମାର ମାଝୀ।

अयोध्यापुरी में श्रीराम के राज्याभिषेक की सभी तैयारियां बड़े उत्साह के साथ की जा रही हैं। कुलगुरु मुनिवर वशिष्ठ जिस व्यक्ति को जो काम करने की आज्ञा देते हैं वो पल भर में ही हो जाता है, मानो उस व्यक्ति ने वो काम पहले से ही कर रखा हो। राज्याभिषेक का समाचार सुनते ही पूरे अवध में बधावे बजने लगे। अयोध्या के महल में श्री राम तथा सीता जी को अंग फड़कने के साथ शुभ शकुन की सूचना मिलने लगी। इन शकुनों को वे भरत के, जो अपने ननिहाल गए हुए थे, अयोध्या आगमन

की सूचना का संकेत मानते हैं। रनिवास में हर्षोल्लास व्याप्त है। जिस सेवक ने अंतपुर में सबसे पहले राम के राज्याभिषेक का समाचार सुनाया, उसे ढेर सारे आभूषण तथा वस्त्रों का पुरस्कार मिला। रानी सुमित्रा ने रत्नों के मनोहर चौक पुराए तो माता कौशल्या ने ब्राह्मणों को बुलाकर दान दक्षिणा दी, ग्राम देवी देवताओं तथा नागों की पूजा की और पुत्र श्री राम के कल्याण का वरदान मांगा। अवध नरेश ने मुनिवर वशिष्ठ को आमंत्रित कर उनसे श्री राम को समयोचित उपदेश देने की प्रार्थना की।

0: अरे पुनिया पुंडा
1: कौन घर
0: मन
2: पड़ा आपण संपत्ति क न गाँ रो घर को बोधे चली जा मन अच्छी ज्योतिष कही
0: तम खुंट छिड़ा कहीं देख क न गाँ रो कौटा जज घर
2: सांगे सांगे इनक्वारी

0: ଶ୍ରୋତାବନ୍ଧୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଆକାଶବାଣୀ ଭବାନୀପାଟଣା କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସକାଳ 8ଟା ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରଥମେ ସମାଚାର ପ୍ରଭାତ, ପରେ ପରେ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ନ୍ୟୁଜ୍ ରିଲି କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ। ଶୁଣିପାରିବେ କିଛି କ୍ଷଣ ମଧ୍ୟରେ।
1: बेटा मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया, मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
3: हर घर सूर्य घर।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। और अब मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में पहली जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने आरजीकर दुष्कर्म हत्या मामले में आरोपों को छिपाने की जांच के लिए सीबीआई की विशेष टीम गठित करने का आदेश दिया। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा, अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा की आपूर्ति करने को तैयार। और आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया।

0: अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइडस से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडुलाइडस कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडुलाइडस मुंबई भी आ चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडुलाइडस की ये पहली भारत यात्रा है।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर के निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले प्रथम अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन के साथ किया जा रहा था, क्योंकि कई अफ्रीकी देश बिग कैट्स के मेजबान हैं। एक रिपोर्ट।
2: पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। अफ्रीकी देशों सहित सभी देशों की व्यापक और सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये शिखर सम्मेलन भी बाद में आयोजित किया जाएगा। भारत सरकार ने पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अधीन अपने नोडल संगठन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के माध्यम से 2024 में अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस की स्थापना की। इसकी शुरुआत बाघ, शेर, तेंदुए, हिम तेंदुए, चीतो, जगुआर और प्यूमाओं के संरक्षण के लिए की गई थी। अनुपम की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
0: जन जन का रखे ध्यान, टीबी मुक्त भारत अभियान।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प।
4: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे, आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
3: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
5: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। एक रिपोर्ट।
6: नई दिल्ली के रेल भवन में कल रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में हुई उच्च स्तरीय सुरक्षा समीक्षा बैठक के बाद ये आग्रह किया गया। मंत्रालय के अनुसार आग लगने की कुछ घटनाओं सहित हाल ही में हुई कई घटनाओं की प्रारंभिक जांच में असामाजिक तत्वों की संलिप्तता के संकेत मिले हैं। कई मामलों में

0: रेलवे अधिकारियों द्वारा समय पर और सक्रिय कार्रवाई से बड़ी दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता मिली है। बैठक में रेलवे नेटवर्क में सीसीटीवी कवरेज बढ़ाने और रेलवे बोर्ड मुख्यालय तथा जोन के बीच समन्वय सुधारने पर भी विचार विमर्श किया गया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि आधुनिक उपकरणों की सहायता से जमीनी स्तर पर खुफिया जानकारी जुटाने की व्यवस्था मजबूत की जा रही है। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार।
1: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव आज से राजस्थान के 2 दिन के दौरे पर रवाना होंगे। रेल मंत्री जोधपुर में विभिन्न रेल सेवाओं का उद्घाटन करेंगे। जोधपुर रेलवे स्टेशन पर आयोजित मुख्य कार्यक्रम में वे 20 डिब्बों वाली जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाएंगे, जो पहले केवल 8 डिब्बों के साथ चल रही थी। श्री वैष्णव साबरमती जोधपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस के जैसलमेर तक का विस्तार का भी उद्घाटन करेंगे। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई को 3 सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजीकर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। एक रिपोर्ट।
2: इस घटना ने राज्य के साथ साथ देश भर के चिकित्सक समुदाय में आक्रोश पैदा कर दिया था। घटना के तुरंत बाद सबूत नष्ट करने और मामले को दबाने का आरोप है। न्यायमूर्ति शंपा सरकार और तीर्थांकर घोष की खंडपीठ ने कल कहा कि सीबीआई के पूर्वी क्षेत्र के संयुक्त निदेशक इस दल का नेतृत्व करेंगे। पीठ ने कहा कि इस जघन्य घटना के सामाजिक परिणामों को ध्यान में रखते हुए 3 सदस्यीय विशेष जांच समिति साक्ष्य नष्ट करने के आरोपों और मृतक डॉक्टर के माता पिता द्वारा घटना को दबाने के आरोपों की जांच करेगी। जांच दल को अदालत ने 25 जून तक एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है। डॉक्टर के माता पिता ने दुष्कर्म और हत्या की आगे की जांच की मांग करते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की थी। उनका दावा है कि इस जघन्य अपराध में 1 से अधिक व्यक्ति शामिल थे। कोलकाता से संदीपन दास की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से आनंद पाठक।
1: सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरूरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरूरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। सीबीआई अधिकारियों ने कुछ दिन पहले डॉक्टर शिरूरे के लातूर स्थित अस्पताल जाकर गहन पूछताछ भी की थी। तमिलनाडु में जोसेफ विजय के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल में आज 2 और मंत्रियों को शामिल किया जाएगा। वीसीके के वन्नी यारासू और आईयूएमएल के एएम शाहजहां को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। चेन्नई के लोकभवन में सवेरे 10 बजे राज्यपाल विश्वनाथ अर्लेकर मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान वाले कब्जे वाले कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वे अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। हमजा बुरहान जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले का रहने वाला था और पाकिस्तान जाकर अलबद्र आतंकी संगठन में शामिल हो गया था। 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में 40 से अधिक सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे। पंजाब पुलिस ने पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 44 पर इंटरनेट से जुड़े सीसीटीवी कैमरे लगाकर पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में पठानकोट निवासी को गिरफ्तार किया है। पठानकोट के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दलजिंदर सिंह ढिल्लों ने बताया कि प्रारंभिक जांच के अनुसार आरोपी बलजीत सिंह ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुल के पास सीसीटीवी कैमरा लगाया था। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका भारत की आवश्यकता के अनुसार ऊर्जा बेचने को तैयार है। उन्होंने ये बात होर्मोज जल डमरू मध्य के बंद होने के कारण भारत में ऊर्जा की बढ़ती कीमतों से संबंधित एक प्रश्न के उत्तर में कही।
3: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: श्री रूबियो 23 से 26 मई तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वे कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा करेंगे। 26 मई को क्वाड की बैठक में श्री रूबियो ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग और जापान के विदेश मंत्री मोतेगी तिशुमुत्सु के भाग लेने की संभावना है। बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ सुब्रमण्यम जयशंकर करेंगे। भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमरीकी वैमानिकी और अंतरिक्ष विज्ञान संस्थान ने 2026 का गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार प्रदान किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की ओर से अमरीका में भारत के राजदूत विनय क्वात्रा ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। कांस फिल्म महोत्सव में कल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई से बनी एक नई फिल्म का प्रीमियर हुआ। हेल ग्राइड नामक एक

0: 95 मिनट की फिल्म को 15 लोगों की टीम ने केवल 14 दिन में तैयार किया है। इस पर लगभग $500,000 की लागत आई है। मणिपुर पुलिस महानिदेशक राजीव सिंह को कैबिनेट सचिवालय में सुरक्षा सचिव नियुक्त किया गया है। सुरक्षा सचिव विशेष सुरक्षा समूह SPG के प्रमुख होते हैं। IPL क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। इसके साथ ही चेन्नई की टीम टूर्नामेंट से बाहर हो गई है। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू की स्थिति के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं वैष्णवी।
1: धन्यवाद फरहद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इटली दौरे से भारत लौटने का समाचार सभी समाचार पत्रों ने सचित्र प्रकाशित किया है। राजस्थान पत्रिका लिखता है 65 समझौते, UAE से इटली तक दिखा भारत का रणनीतिक दबदबा। लोकसत्ता के शब्द हैं 6 दिवसीय मैराथन दौरे में कच्चे तेल से अंतरिक्ष तक 57 करार। पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा राज्य के सभी मदरसों में वंदे मातरम अनिवार्य करने का समाचार भी आज सभी समाचार पत्रों की सुर्खी बनी है। जनसत्ता लिखता है पश्चिम बंगाल सरकार का आदेश, सभी मदरसों में अब वंदे मातरम गाना अनिवार्य है। हिंदुस्तान ने पुलवामा आतंकी हमले के साजिशकर्ता की मौत का समाचार दिया है। पत्र लिखता है POK में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर ढेर किया, पुलवामा हमले का सूत्रधार मारा गया। अमर उजाला ने केंद्रीय मंत्री परिषद की अहम बैठक में लिए गए निर्णयों पर समाचार दिया है। सरकारी कामकाज में लेट लतीफी पर PM सख्त, मंत्रियों को तेजी से परिणाम देने का अल्टीमेटम, मंत्रालयों और नीति आयोग ने पेश की कार्य योजना। 35 शहरों में रात का पारा 30 पार, दिल्ली में 14 साल का रिकॉर्ड टूटा, दैनिक भास्कर की सुर्खी है। पंजाब केसरी लिखता है हीट स्ट्रोक का कहर, 2 मरीज अस्पताल में भर्ती। नवभारत टाइम्स ने अपने संपादकीय पन्ने पर हंता वायरस पर लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है वायरस कहीं आतंकी न बन जाए, कोरोना और हंता वायरस ने बढ़ाई तकनीकी विकास के गलत इस्तेमाल की चिंता। संपादक लिखता है दुनिया को अब फिक्र सता रही है कि आने वाले दिनों में कहीं आतंकी संगठन वायरसों का इस्तेमाल न करने लगे।
0: धन्यवाद वैष्णवी। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति के साथ वार्ता करेंगे। नई दिल्ली में 1 जून को आयोजित होने वाला पहला अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस शिखर सम्मेलन स्थगित। रेलवे ने यात्रियों से सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 139 पर देने को कहा। पुलवामा आतंकी हमले के एक मास्टरमाइंड हमजा बुरहान को पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में अज्ञात हमलावरों ने मार गिराया। और IPL क्रिकेट में गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम VC प्रमोद। द हेडलाइंस। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू होल्ड टॉक्स विद प्रेसिडेंट ऑफ साइप्रस निकोस क्रिस्टोडोलाइडस इन न्यू दिल्ली टुडे। First International Big Cat Alliance Summit scheduled to take place in New Delhi on June 1st postponed. Railways urges passengers to remain alert and immediately report any suspicious activity or individual on railway premises on helpline number 139. Calcutta High Court orders setting up special team of CBI to probe hushing up charges in RG Kar rape murder case. Pulwama terror attack mastermind Hamza Burhan killed by unknown gunmen in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. US Secretary of State Marco Rubio says Washington is ready to sell as much energy as India is willing to buy. And in IPL cricket, Gujarat Titans beat Chennai Super Kings by 89 runs in Ahmedabad. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, in New Delhi today. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the Delhi airport. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alex

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: मन की बात प्रधानमंत्री आकाशवाणी पर।
1: मेरी मन की बात के संबंध में अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली, अगर चिट्ठी भी भेज देंगे और कुछ सुझाव देंगे वो जरूर मुझ तक पहुंच जाएगा और मैं जरूर उसको गंभीरता से लूंगा।
0: यदि आप माननीय प्रधानमंत्री को मन की बात के लिए कोई सुझाव देना चाहते हैं तो पता नोट करें, मन की बात आकाशवाणी संसद मार्ग नई दिल्ली 110001।
1: मैं आपको निमंत्रण देता हूँ, मेरे मन की बात के लिए आपके मन की बात भी जुड़नी चाहिए।
2: सुनुछंती केतोटी ओडिया कथाचित्रर गीता आकाशवाणी भवानीपाटण केन्द्ररु। कार्यक्रम शेषे आसतु शुणा इडियट कथाचित्रर। कंठशिल्पी बाबूसान, गीत रचना बापू गोस्वामी, संगीत निर्देशना गुडली रथ, कथाचित्र इडियट।

0: ଶୁଣୁଥିଲେ କେତୋଟି ଓଡ଼ିଆ କଥାଚିତ୍ରର ଗୀତ। ଆକାଶବାଣୀ ଫପାନିପାଟଣା। ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୂର୍ବାହ୍ନ 10:00 ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରସାରଣ ପ୍ରଥମେ ହିନ୍ଦୀରେ ପରେ ପରେ ଇଂରାଜୀରେ ସମ୍ବାଦ ରିଲେ କରି ପ୍ରଚାର କରୁଛୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀ କେନ୍ଦ୍ରରୁ।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं वैष्णवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडुलाइट से वार्ता करेंगे। श्री क्रिस्टोडुलाइट कल नई दिल्ली पहुंचे। सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टम्टा ने हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया। इससे पहले श्री क्रिस्टोडुलाइट मुंबई भी जा चुके हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपति निर्वाचित होने के बाद श्री क्रिस्टोडुलाइट की ये पहली भारत यात्रा है।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति विभिन्न पारस्परिक हितों के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने के लिए चर्चा करेंगे। इन क्षेत्रों में व्यापार, निवेश, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, संस्कृति, आवागमन, रक्षा और सुरक्षा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI, फिनटेक, नवाचार और अनुसंधान शामिल हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। दोनों देश अगले वर्ष फरवरी में अपने राजनयिक संबंधों के 65 वर्ष पूरे करेंगे। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि दुनिया भारत को एक भरोसेमंद साझेदार के रूप में देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों के दौरे के बारे में नई दिल्ली में संवाददाताओं से बातचीत में श्री गोयल ने कहा कि इस यात्रा से समाज के हर वर्ग को लाभ की गारंटी है। उन्होंने बताया कि 5 देशों की यात्रा के दौरान 57 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इसमें भारत में 75 से 100 अरब डॉलर की निवेश की संयुक्त अरब अमीरात की प्रतिबद्धता भी शामिल है। नई दिल्ली में 1 जून को होने वाले पहले अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस IBCA शिखर सम्मेलन स्थगित कर दिया गया है। इसका आयोजन 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन IAFS 4th के साथ किया जा रहा था। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष और अफ्रीकी संघ आयोग के साथ परामर्श करके 4th भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन को बाद में आयोजित करने के फैसले के बाद ये निर्णय लिया गया है। रेल मंत्रालय ने रेलवे के बुनियादी ढांचे और ट्रेन संचालन को निशाना बनाकर हाल ही में हुई घटनाओं के बीच रेल मंत्रालय ने यात्रियों से यात्रा के दौरान सतर्क रहने और रेलवे परिसर में किसी भी संदिग्ध गतिविधि या व्यक्ति की सूचना हेल्पलाइन नंबर 139 पर तुरंत देने का आग्रह किया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI को

0: तीन सदस्यीय विशेष जांच दल गठित करने का आदेश दिया है। ये दल अगस्त 2024 में आरजी कर मेडिकल कॉलेज की प्रशिक्षु डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या मामले की विस्तृत जांच करेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई ने नीट परीक्षा प्रश्न पत्र लीक मामले में लातूर के एक बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मनोज शिरोरे को हिरासत में लिया है। सूत्रों के अनुसार जांच एजेंसी को संदेह है कि डॉक्टर शिरोरे ने कथित तौर पर अपनी बेटी के लिए नीट परीक्षा का प्रश्न पत्र खरीदा था। पुलवामा आतंकी हमले के कथित मास्टरमाइंड हमजा बुरहान की पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में गोली मारकर हत्या कर दी गई। वह अलबद्र आतंकी संगठन का कमांडर था और भारत ने उसे वर्ष 2022 में आतंकवादी घोषित किया था। पुलिस के अनुसार मुजफ्फराबाद में अज्ञात हमलावरों ने उस पर कई गोलियां चलाई। गंभीर रूप से घायल बुरहान को अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ की महिला पर्वतारोहण टीम को एवरेस्ट पर्वत पर विजय प्राप्त करने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट पर श्री शाह ने कहा कि नारी शक्ति बीएसएफ की अजय शक्ति का प्रमाण है। महान समाज सुधारक राजा राममोहन राय की आज जयंती है। गृह मंत्री अमित शाह ने राजा राममोहन राय को श्रद्धांजलि अर्पित की है। श्री शाह ने कहा कि ब्रह्म समाज की स्थापना के माध्यम से राजा राममोहन राय ने लोगों को सामाजिक अंधविश्वासों, रूढ़ियों और असमानताओं के विरुद्ध जागरूक किया। आईपीएल क्रिकेट में कल रात गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स को 89 रन से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज सनराइजर्स हैदराबाद का सामना रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। मौसम विभाग ने आज उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू की स्थिति के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani, the news read by Sarabjit Kaur. Prime Minister Narendra Modi will hold talks with President of Cyprus, Nikos Christodoulides, in New Delhi today. Mr. Christodoulides arrived in New Delhi yesterday. He was received by Union Minister of State for Road Transport and Highways, Ajay Tamta, at the airport. He also visited Mumbai. He is accompanied by a high-level delegation comprising Minister of Foreign Affairs, Dr. Konstantinos Kombos, Minister of Transport, Communications and Works, Alexis Veftis, senior officials and business leaders. This is the first visit of President Christodoulides to India in his current capacity. Prime Minister Narendra Modi chaired the meeting of the Council of Ministers yesterday in New Delhi. In a social media post, Mr. Modi said that the meeting involved exchange of perspectives and best practices related to boost ease of living, ease of doing business and further reforms in order to realise the shared dream of a Vikasit Bharat. Amid recent incidents targeting railway infrastructure and train operations, Railway Ministry has urged passengers to remain alert during travel and immediately report any suspicious activity or individuals on railway premises through helpline number 139. The appeal came after a high-level security review meeting chaired by Railway Minister Ashwani Vaishnaw at Rail Bhavan in New Delhi yesterday. Ministers of State for Railways V. Somanna and Ravneet Singh Bittu, along with senior railway board officials and field officers from across the country, attended the meeting. The Calcutta High Court has ordered setting up a 3-member special investigation team, SIT, of the CBI to probe the developments from the time the RJ Kaur Medical College's trainee doctor had dinner on the ill-fated night of August 2024 to her cremation. The young medic was raped and murdered in the hospital on the night of August 9, 2024. A division bench comprising Justices Shampa Sarkar and Tirthankar Ghosh yesterday said the CBI's Joint Director East will head the team. The other 2 members of the team would be decided within 48 hours of the court's order. Hamza Burhan, believed to be one of the masterminds behind the 2019 Pulwama terror attack that claimed the lives of over 40 CRPF personnel, was killed yesterday when unknown gunmen opened fire on him in Pakistan-occupied Jammu and Kashmir. He had been living undercover as a teacher in POJK following the Pulwama attack. He was

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: चुनौती

0: नमस्कार। सीमा सुरक्षा बल गान की प्रस्तुति अभी आपने सुनी और विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल से मैं आप सभी का स्वागत करती हूं। मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू के साथ आकाशवाणी की ओर से कार्यक्रम का शुभारंभ हो चुका है और माननीय मुख्य अतिथि पधार चुके हैं। माननीय मुख्य अतिथि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपना स्थान ग्रहण कर चुके, उनको पुष्प भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार पुष्प भेंट कर रहे हैं श्री अमित शाह जी को।
1: Well, the program has begun with the arrival of the Home Minister, Shri Amit Shah. They've all taken the seats on the dais. And now we have the welcome address by the DG of BSF, Shri Praveen Kumar. He walks to the podium to address the gathering.
0: आपको बताना चाहेंगे आज यहाँ सीमा सुरक्षा बल का 23वां अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान जैसे गरिमामय और प्रेरणादायक कार्यक्रम का आयोजन आज विज्ञान भवन के प्लेनरी हॉल में किया गया। कुछ एक पलों में विधिवत स्वागत।

और फिलहाल आपको बता दें सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज का यह कार्यक्रम ऐतिहासिक कार्यक्रम है और आज उन 20 सीमा प्रहरियों के शौर्य और बलिदान को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपने पराक्रम से देश का गौरव विश्व पटल पर ऊंचा किया है अनेक सीमा प्रहरियों ने वीरता के अमित

0: the 23rd BSF Investiture Ceremony and the Rustamji Memorial Lecture is taking place today at the Vigyan Bhavan. And with the arrival of the Home Minister, Shri Amit Shah, the program has just begun and he was presented with a bouquet. And now, right now, the DG of the BSF, Shri Praveen Kumar, is at the desk addressing the gathering with a welcome address.
1: और संप्रभुता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्योछावर किए हैं। उनका साहस, समर्पण और बलिदान हम सभी के लिए एक प्रेरणा स्रोत है। हम आज अपने बल के संस्थापक श्री के एफ रुस्तम जी की गौरवशाली विरासत को भी श्रद्धापूर्वक स्मरण करते हैं, जिनकी दूरदृष्टि और सफल नेतृत्व ने इस महान बल की मजबूत नींव रखी। पिछले छह दशकों में सीमा सुरक्षा बल ने विश्व के श्रेष्ठतम सीमा सुरक्षा बलों में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की है। सीमा प्रबंधन, आतंकवादी रोधी अभियानों तथा आंतरिक सुरक्षा के क्षेत्र में बीएसएफ ने अद्वितीय पेशेवर दक्षता का परिचय दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी हमारे जवानों ने वीरता एवं कर्तव्य निष्ठा के सर्वोच्च परंपराओं को कायम रखते हुए दो वीर चक्र एवं अनेक वीरता पदक अर्जित किए हैं। हमारी प्राथमिकताएं स्पष्ट हैं, सुदृढ़ एवं व्यापक सीमा प्रबंधन, आधुनिक तकनीक से सुसज्जित सुरक्षा व्यवस्था, परिचालन तत्परता और जवानों का कल्याण। गत वर्ष सीमा सुरक्षा बल ने पश्चिमी एवं पूर्वी सीमाओं पर अनेक महत्वपूर्ण सफलताएं प्राप्त की तथा माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त भारत के संकल्प को साकार करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बल के तकनीकी आधुनिकीकरण के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय प्रगति की है। अत्याधुनिक निगरानी प्रणालियों, ड्रोन एवं एंटी ड्रोन तकनीक, थर्मल इमेजर तथा एकीकृत कमांड सिस्टम जैसी आधुनिक व्यवस्थाओं को भी प्रभावी रूप से अपनाया गया है। गत वर्ष बीएसएफ ने सीमा पार से भेजे गए 300 से अधिक ड्रोनों को निष्क्रिय कर मार गिराया है, जो उभरती सुरक्षा चुनौतियों के प्रति हमारी सतर्कता एवं सजगता का प्रमाण है। साथ ही स्वास्थ्य सेवाओं, आवास एवं कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जवानों और उनके परिवारों के जीवन स्तर एवं मनोबल को निरंतर सुदृढ़ किया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल ने खेलों में के क्षेत्र में भी उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की हैं। पिछले एक वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में 8 स्वर्ण सहित कुल 17 पदक तथा राष्ट्रीय खेलों में 149 पदक अर्जित किए हैं। यह अत्यंत गर्व का विषय है कि कल ही मात्र 24 घंटा पहले बीएसएफ की प्रथम सर्व महिला पर्वतारोहण टीम ने सफलतापूर्वक माउंट एवरेस्ट फतह कर विश्व की सर्वोच्च चोटी पर तिरंगा एवं बीएसएफ का ध्वज फहराने का गौरव प्राप्त किया है। साथ ही बीएसएफ की पुरुष पर्वतारोहण टीम माउंट लोत्से अभियान पर अग्रसर है, जो बल की अदम्य साहस एवं उत्कृष्टता की भावना को प्रतिबिंबित करता है। यह वर्ष विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि सीमा सुरक्षा बल अपनी हीरक जयंती मना रहा है। सेवा, बलिदान और शौर्य के 60 गौरवशाली वर्ष। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के उपलक्ष्य में देश भर में विभिन्न कार्यक्रमों, मैराथनों एवं जनसंपर्क गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में बीएसएफ ने कश्मीर, जम्मू, अमृतसर एवं देहरादून में सफल मैराथनों का आयोजन किया, जो जनता के साथ बल के गहरे जुड़ाव एवं राष्ट्र सेवा की भावना को दर्शाता है। महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विकसित भारत के लिए निर्धारित लक्ष्य को साकार करने हेतु बीएसएफ पूर्णतः प्रतिबद्ध है। हम माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी को भी आश्वस्त करते हैं कि सीमा की समस्त सीमा प्रहरी परिवार सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वश्रेष्ठ बॉर्डर गार्डिंग फोर्स बनाने के लिए कर्तव्यबद्ध एवं समर्पित है। अंत में मैं एक बार पुनः माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी का सीमा सुरक्षा बल को निरंतर सहयोग, मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान करने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद।
2: महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी ने विधिवत स्वागत किया सभी अतिथिगणों का। और अब बीएसएफ डॉक्यूमेंट्री पर एक वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा।
3: सुरक्षा बल देश ही नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा सीमा रक्षक बल है। यूं तो सीमा सुरक्षा बल की गौरवशाली यात्रा, उत्कृष्ट सीमा प्रबंधन और

0: भारतीय आंतरिक सुरक्षा क्षमता के साथ साथ आधुनिकतम तकनीकी दक्षताओं को एक छोटे से अंतराल में बयां कर पाना बेहद कठिन है, परंतु हमने इसके सारांश को एक छोटे से वृत्त चित्र के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है, जिसे नाम दिया है सीमा और आंतरिक सुरक्षा के सजग प्रहरी, सीमा सुरक्षा बल। तो प्रस्तुत है यह वृत्त चित्र।
1: वर्ष 1965 में स्थापना के साथ ही बीएसएफ ने राष्ट्र की सीमाओं की सुरक्षा का दायित्व संभाला। स्थापना के मात्र 6 वर्षों के बाद संस्थापक महानिदेशक श्री के एस रुस्तम जी के नेतृत्व में बीएसएफ ने 1971 के युद्ध में पश्चिमी और पूर्वी सीमा पर अदम्य साहस, उत्कृष्ट युद्ध कौशल एवं पराक्रम का परिचय दिया। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम में बीएसएफ की अहम भूमिका रही है। बाद के वर्षों में सीमा सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ ने पंजाब और कश्मीर के आतंकवाद विरोधी अभियानों और पूर्वोत्तर भारत के प्रतिविद्रोहिता अभियानों में अप्रतिम योगदान दिया। कारगिल युद्ध के समय भी बीएसएफ के वीरों ने अग्रिम मोर्चों पर डटे रहकर अपनी बहादुरी सिद्ध की। भारत सरकार के 31 मार्च 2026 तक नक्सल मुक्त भारत अभियान के लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करने में भी बीएसएफ की सक्रिय भागीदारी रही है। इन सभी अभियानों में अद्वितीय योगदान के लिए बीएसएफ ने अनेक वीरता पदक अर्जित किए। आज पश्चिमी सीमा पर हिमालय की बर्फीले व दुर्गम पर्वतीय क्षेत्रों, तपते रेगिस्तान तथा गुजरात के विशाल रण जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों से जूझते हुए सीमा प्रहरियों के समक्ष सीमा पार आतंकवाद, हथियारों एवं गोला बारूद की तस्करी, हीरोइन व अन्य मादक पदार्थों की तस्करी जैसी गंभीर चुनौतियां हैं। पूर्वी सीमा पर सीमांत क्षेत्रों में घनी आबादी, नदी नालों की बहुतायत, मानसूनी वन और उत्तर पूर्व की जटिल पहाड़ी श्रृंखलाएं भौगोलिक जटिलता प्रस्तुत करती हैं। पूर्व में सुंदरबन डेल्टा तथा पश्चिम में गुजरात के क्रीक जैसे दुर्गम जलीय सीमांत इलाकों में बीएसएफ की वाटर विंग के फ्लोटिंग बीओपी एवं अत्याधुनिक क्राफ्ट इन क्षेत्रों में प्रभावी निगरानी और सीमा सुरक्षा सुनिश्चित कर रहे हैं। सीमा सुरक्षा के साथ साथ बीएसएफ आंतरिक सुरक्षा ड्यूटी जैसे चुनावों के दौरान सुरक्षा व्यवस्था में भी पूरी जिम्मेदारी से योगदान देता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ के प्रहरियों ने अदम्य साहस, पराक्रम और सर्वोच्च समर्पण का परिचय दिया।
2: ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने हमारी बीएसएफ का भी अभूतपूर्व पराक्रम और अदम्य साहस देखा है। हमारी सीमाओं पर तैनात बीएसएफ के जाबाज सुरक्षा की अभेद चट्टान है।
1: अभियान में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर प्रहरियों की गाथाएं राष्ट्र की सामूहिक स्मृति में सदैव अमर रहेंगी। गृह मंत्रालय सदैव बीएसएफ के लिए मार्गदर्शक एवं प्रेरणा स्रोत रहा है तथा बल के आधुनिकीकरण, परिचालन क्षमता और कल्याण संबंधी आवश्यकताओं को निरंतर सुदृढ़ कर रहा है।
2: और मैं सभी बल के जवानों को कहना चाहता हूँ, न केवल देश के प्रधानमंत्री, न केवल गृह मंत्री, समग्र देश की जनता आपकी वीरता को सैल्यूट करती है, आपकी दक्षता पर भरोसा करती है और आपकी प्राण के अंत तक देश की सुरक्षा करने की धगस से निश्चिंत होकर 12 महीना चैन की नींद सोती।
1: आधुनिकीकरण की दिशा में बीएसएफ अग्रसर है, जिसे स्मार्ट फेंस की व्यवस्था बखूबी रेखांकित करती है। यह फ्लडलाइट्स, ड्रोन आधारित निगरानी, रडार, फिडार, सीसीटीवी कैमरों और अन्य उपकरणों के समेकित उपयोग की व्यवस्था है। स्पेस टेक्नोलॉजी के साथ साथ ड्रोन फॉरेंसिक्स के उपयोग में भी बीएसएफ ने नए प्रतिमान रचे हैं। सीमा प्रबंधन में तकनीकी नवाचारों का समावेश करने के लिए

0: विभिन्न भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और अन्य प्रतिष्ठित संस्थानों से करार किए गए और किए जा रहे हैं। बीएसएफ की अश्रु गैस इकाई ने इस वर्ष अपनी स्थापना के 50 वर्ष पूरे किए हैं। इस संस्था के उत्पाद आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य में अहम भूमिका निभाते हैं। खेलों के क्षेत्र में भी बीएसएफ ने उल्लेखनीय उपलब्धियां अर्जित की है। बीएसएफ में खेलों के प्रति नीतियों में आमूल परिवर्तन किए गए हैं। खिलाड़ियों के चयन, उनके प्रशिक्षण, खानपान, स्वास्थ्य सुविधाओं तथा उन्नत प्रशिक्षण उपकरणों की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। बीएसएफ के खिलाड़ी वर्ल्ड पुलिस गेम्स, पुलिस ड्यूटी मीट तथा विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं और वुशु जैसे खेलों में स्वर्ण पदक जीतकर देश एवं बल का नाम विश्व स्तर पर गौरवान्वित कर रहे हैं। बीएसएफ के राष्ट्रीय श्वान प्रशिक्षण केंद्र द्वारा प्रशिक्षित स्वदेशी नस्ल के श्वानों ने अनेक राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रथम स्थान प्राप्त किए हैं। प्रहरियों का कल्याण गृह मंत्रालय एवं बल प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में है। नए आवासीय परिसरों का निर्माण किया गया है तथा स्वास्थ्य, शिक्षा एवं पारिवारिक कल्याण से संबंधित अनेक योजनाओं का सतत क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जा रहा है। सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की पेंशन एवं अन्य देयकों के त्वरित निस्तारण को भी बीएसएफ प्रशासन सर्वोच्च प्राथमिकता देता है। बल की हीरक जयंती के अवसर पर वर्ष पर्यंत कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 60 वर्षों की सेवा, बलिदान एवं सशक्तिकरण की गाथाओं को पिरोए हुए अनेक कार्यक्रम सीमावर्ती क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि पूरे देश में आयोजित किए जा रहे हैं। इनका उद्देश्य राष्ट्र रक्षा और राष्ट्र निर्माण में बीएसएफ के योगदानों को जन जन तक पहुँचाना है। हीरक जयंती समारोह के उपलक्ष्य में बीएसएफ के महिला पर्वतारोही दल ने वंदे मातरम अभियान को सफल काम करते हुए 21 मई 2026 को विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर विजय पाई है।
1: कौशल, शेरिंग, रेबेका और मुनमुन, सबसे पहले तो समस्त बीएसएफ परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत बहुत बधाई।
0: विश्व की सबसे ऊंची चोटी पर राष्ट्रगीत गाकर बीएसएफ टीम ने देश और बल के गौरवशाली इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। आज इस अवसर पर प्रत्येक सीमा प्रहरी माननीय प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने और माननीय गृह मंत्री जी के सीमा सुरक्षा बल को विश्व का सर्वोत्तम सुरक्षा बल बनाने की परिकल्पना को साकार करने के लिए पुनः संकल्प लेता है। जय हिंद।
2: सुरक्षा बल ने अपने 6 दशकों में गौरवपूर्ण सफर में न केवल सीमाओं की रक्षा की है बल्कि देश की विभिन्न सुरक्षा चुनौतियों में भी अद्वितीय योगदान दिया है। सीमा सुरक्षा बल ने स्वयं को विशिष्ट संगठन के रूप में स्थापित करते हुए देश की प्रथम रक्षा पंक्ति में होने का सम्मान भी अर्जित किया है। और अब सीमा प्रहरियों का अलंकरण समारोह मुख्य अतिथि श्री अमित शाह के कर कमलों से।
3: And now the awards are going to be given to all the people for the gallantry and for the wonderful work they've done for the country and what they've achieved. And they'll be receiving the awards from the Home Minister, Shri Amit Shah. And Shri Amit Shah has come to the front of the dais to give away the awards to everyone.
4: BSF ki 35 battalion ki ek tukdi एरिया डोमिनेशन के लिए आगे बढ़ रही थी तभी नक्सलियों द्वारा बिछाई गई आईडी की चपेट में आकर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह बुरी तरह जख्मी हो गए। परंतु अब इस बहादुर प्रहरी ने ना सिर्फ आखिरी सांस तक नक्सलियों से लोहा लिया बल्कि अपने साथियों को सुरक्षित बचाने में भी कामयाब रहे। अदम्य साहस, शौर्य, पराक्रम एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर उप निरीक्षक महेंद्र सिंह को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद उप निरीक्षक महेंद्र सिंह की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती राजवती।

आरक्षक रंजीत यादव 163 बटालियन मरणोपरांत। 6 जून 2023 मणिपुर के मैतेई एवं कुकी समुदाय के बीच खूनी संघर्ष के दौरान शांति बहाली के लिए तैनात 163 बटालियन की टुकड़ी पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया, जिससे टुकड़ी में शामिल आरक्षक रंजीत यादव बुरी तरह जख्मी हो गए, परंतु अपने बहते खून की परवाह किए बगैर बहादुर प्रहरी रंजीत यादव आखिरी सांस तक लड़ते रहे और उपद्रवियों को मैदान छोड़ने पर मजबूर कर दिया, लेकिन बहुत अधिक खून बह जाने के कारण अंततः वीरगति को प्राप्त हुए। असीम शौर्य, पराक्रम, मारक क्षमता एवं उच्च कोटि की कर्तव्य परायणता के लिए बहादुर प्रहरी रंजीत यादव को मरणोपरांत वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक रंजीत यादव की बहादुर धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या यादव।

आरक्षक नरेंद्र कुमार मरणोपरांत एवं श्री अशोक कुमार उप कमांडेंट 122 बटालियन 28 मई सन 2023 मणिपुर का मौर्य इलाका राज्य में कानून व्यवस्था कायम करने के मकसद से तैनात बीएसएफ की 122 बटालियन की एक टुकड़ी का नेतृत्व बहादुर अधिकारी श्री अशोक कुमार कर रहे थे। अचानक उग्र भीड़ ने आम नागरिकों पर हमला कर दिया। अमूल्य मानव जीवन की हिफाजत के लिए सीमा प्रहरियों ने फौरन जवाबी कार्रवाई की और आगे बढ़ते हुए उपद्रवियों का डटकर मुकाबला किया, परंतु इस दौरान सीमा प्रहरियों की टीम में शामिल बहादुर आरक्षक नरेंद्र कुमार बुरी तरह जख्मी हो गए, लेकिन आखिरी दम तक डटे रहे और कर्तव्य की बलिदिवेरी पर अंततः वीर गति को प्राप्त हुए। अद्भुत नेतृत्व क्षमता और पराक्रम के लिए बहादुर अधिकारी अशोक कुमार तथा शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार को वीरता पदक से अलंकृत किया गया। पहले पदक प्राप्त करने आ रही हैं शहीद आरक्षक नरेंद्र कुमार की बहादुर जीवन संगिनी श्रीमती सुनीता देवी।

देवियों तथा सज्जनों, सीमा सुरक्षा बल का गौरवशाली इतिहास असंख्य वीर गाथाओं से भरा पड़ा है। उसी गौरवशाली इतिहास में गत वर्ष एक और नया अध्याय लिखा गया, जिसे हम सभी ऑपरेशन सिंदूर के नाम से जानते हैं। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट 7वीं बटालियन, 9 और 10 मई 2025 की रात जम्मू सेक्टर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगी सीमा चौकी खरकोला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सीमा पार से लगातार हो रही गोलीबारी के बीच बहादुर अधिकारी अभिषेक श्रीवास्तव ने नेतृत्व संभाले रखा और अपनी जान पर खेलकर अपने घायल साथियों को भी सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। शौर्य, पराक्रम, नेतृत्व एवं बहादुरी की अद्भुत मिसाल कायम करने वाली इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री अभिषेक श्रीवास्तव, सहायक कमांडेंट।

श्री रविंद्र राठौर उप कमांडेंट ऑपरेशन सिंदूर के दौरान राजस्थान के श्रीगंगानगर सेक्टर से लगी पाकिस्तानी सीमा के रास्ते भारत में घुसपैठ की कोशिश कर रहे एक पाक रेंजर को अपनी जान पर खेलकर गिरफ्त में लेते हुए ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उत्पन्न हुए सामरिक व पेचीदा कूटनीतिक परिदृश्य को बदल

देने वाले बहादुर अधिकारी श्री रविंद्र राठौड़ उप कमांडेंट को उनके अदम्य साहस शौर्य तथा सूझबूझ के लिए वीरता पदक से अलंकृत किया गया। श्री रविंद्र राठौड़ उप कमांडेंट

श्री आलोक नेगी सहायक कमांडेंट 53वीं बटालियन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान नियंत्रण रेखा पर दुश्मन द्वारा की गई तीव्र एवं लगातार गोलाबारी के बीच 53वीं बटालियन के सहायक कमांडेंट श्री आलोक नेगी ने अत्यंत विषम परिस्थितियों में अग्रिम चौकियों पर तैनात रहते हुए अपने जवानों का मनोबल बनाए रखा और अपनी प्रभावी कार्रवाई से शत्रु की गतिविधियों को निष्फल किया। साहसिक नेतृत्व, वीरता, पराक्रम और असीम शौर्य के लिए इस बहादुर अधिकारी को वीरता पदक से अलंकृत किया गया है। श्री आलोक नेगी, सहायक कमांडेंट।

मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा 175 बटालियन 20 अप्रैल सन 2023 भारत बांग्लादेश सीमा पर रात के लगभग 9:30 बजे पेट्रोलिंग के दौरान मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा ने टेंगोन नदी के पुल के समीप कुछ संदिग्ध व्यक्तियों को देख जैसे ही ललकारा कि भारी संख्या में बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। बुरी तरह घायल होने के बावजूद बहादुर सीमा प्रहरी नरबू शेरपा ने वीरता के साथ मुकाबला करते हुए एक तस्कर को धर दबोचा। शौर्य पराक्रम एवं वीरता की पराकाष्ठा रचते हुए मातृभूमि की रक्षा सुनिश्चित करने वाले हेड कांस्टेबल नरबू शेरपा को राष्ट्र द्वारा वीरता पदक से अलंकृत किया गया। मुख्य आरक्षक नरबू शेरपा

और अब सराहनीय सेवा पदक उन कर्तव्यनिष्ठ अधिकारियों व सीमा प्रहरियों के लिए जिनकी लंबी बेदाग और सराहनीय सेवाओं के फलस्वरूप राष्ट्र द्वारा सराहनीय सेवा पदक से अलंकृत किया गया है। इस क्रम में सर्वप्रथम अलंकरण हेतु गर्व से आगे आ रहे हैं श्री मनिंदर प्रताप सिंह पवार महानिरीक्षक।

और अब विशेष संक्रिया यानी स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक श्री अंकित गोयल आईपीएस उप महानिरीक्षक क्षेत्रीय मुख्यालय गुरदासपुर 12 नवंबर 2021 महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्र गढ़चिरौली में एसपी के रूप में तैनाती के दौरान श्री अंकित गोयल ने विश्वस्त सूचना के आधार पर एक ऑपरेशन लॉन्च किया जिसमें नक्सलियों और कमांडोज के बीच 13 से 16 नवंबर 2021 तक चले मुठभेड़ में 27 खूंखार नक्सली मारे गए तथा भारी मात्रा में असला और गोला बारूद भी बरामद किया गया वीरता शौर्य एवं रण कौशल में माहिर इस बहादुर अधिकारी को स्पेशल ऑपरेशंस के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए केंद्रीय गृह मंत्री उत्कृष्टता पदक से अलंकृत किया गया है श्री अंकित गोयल उप महानिरीक्षक

निदेशक आसूचना ब्यूरो श्री राजेंद्र कुमार जी सचिव सीमा प्रबंधन गृह मंत्रालय श्री महेश कुमार अग्रवाल विशेष महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल और आज इस सभागार में उपस्थित 43 वो बहादुर सीमा सुरक्षा बल के जवान जिनको अलग अलग प्रकार के पदक आज प्राप्त हुए हैं। सीमा सुरक्षा बल के सभी पूर्व डीजी जिन्होंने अपने अपने समय में सीमा सुरक्षा बल को और मजबूत करने में सराहनीय योगदान दिया है और भारत सरकार के सभी उपस्थित अधिकारीगण अलग अलग सीएपीएफ के डीजी और प्यारे जवानों, सबसे पहले मैं आज आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। यह अलंकरण समारोह एक प्रकार से अधिक निष्ठा कर्तव्य परायणता और राष्ट्र के प्रति पूर्ण आपका जो समर्पण है इसका प्रतीक है। सबसे पहले मैं स्थापना से अब तक 65 से 2026 तक सीमा सुरक्षा बल के जिन जवानों ने अपनी अप्रतिम देशभक्ति और कर्तव्य परायणता का प्रदर्शन करते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो सभी 2000 से ज्यादा जवानों को मन पूर्वक श्रद्धांजलि और आदर पूर्वक नमन करना चाहता हूं। मित्रों, आज मेरे लिए भी एक प्रकार से गौरव का विषय है कि विश्व के सबसे बड़े सीमा सुरक्षा बल के अलंकरण समारोह और उसके स्थापक श्री रुस्तम जी की स्मृति में स्मृति व्याख्यान में उपस्थित होने का मुझे मौका मिला है। मैं एक प्रकार से तीसरी बार इस कार्यक्रम में उपस्थित हो रहा हूं। आज हम सब जानते हैं कि 65 के युद्ध के बाद सीमा सुरक्षा व्यवस्था में जो गैप्स थे, जो कमियां थी, उसका एक गहन अभ्यास करने के बाद एक ऐसे बल की उपस्थिति महसूस की गई जो शांति काल में भी 24 घंटा हमारी सीमाओं की सुरक्षा करे। और उस वक्त पद्म विभूषण केएफ रुस्तम जी के नेतृत्व में बीएसएफ की स्थापना हुई और जब से बीएसएफ की स्थापना हुई है सैन्य बीएसएफ ने न केवल गृह मंत्रालय पूरे देश को सीमाओं की सुरक्षा के बारे में सुनिश्चित सुरक्षा कर निश्चिंत करने का काम सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने किया है। इसको पूरा देश इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता है। 65 से 74 तक श्री रुस्तम जी ने सीमा सुरक्षा बल का एक प्रकार से नेतृत्व भी किया, नींव डालने का काम भी किया और सीमा सुरक्षा बल का कल्चर को बनाने का भी काम किया। कोई भी संस्था में संस्थापक शुरुआत किस रास्ते पर करता है इसका बड़ा महत्व होता है और मुझे आज कहने में कोई संकोच नहीं है कि श्रीमान रुस्तम जी ने जो नींव डालने का काम किया है वो नींव पर आज सुरक्षा के क्षेत्र में एक भव्य इमारत बनाने का काम बीएसएफ ने किया है जो देश के लिए
अति गौरव की

0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान। और अब माननीय मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध है कि वह हमें अपने आशीर्वचनों से अनुग्रहित करने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं
1: नाउ श्री अमित शाह द गेस्ट ऑफ ऑनर ओवर हियर। He walks to the podium.
2: आज के इस गरिमामयी कार्यक्रम में मेरे साथ मंच पर उपस्थित महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल श्री प्रवीण कुमार जी, श्री तपन डेका जी,

पाठ है। आज यहां पर वीरता पदक, सराहनीय सेवा पदक और अभियानों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए गृहमंत्री पदक भी हमारे जवानों ने दिया जवानों को दिया गया है। ये कोई सीमा सुरक्षा बल के लिए नई बात नहीं है। मैं आगे बताऊंगा, ढेर सारे पदक आपने आपके शौर्य और पराक्रम से अर्जित किए हैं और बल की शान हमेशा बढ़ाई है। मगर सबसे पहले मैं अभी अभी बीएसएफ की महिला टीम द्वारा माउंट एवरेस्ट पर फतह करने की एक ऐतिहासिक उपलब्धि प्राप्त की है, इसलिए उस टीम के सभी सदस्यों को और सभी सीमा सुरक्षा बल के जवानों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। अभी हमने दृश्य देखा, एवरेस्ट की चोटी पर जब वंदे मातरम गाया जाता है तो यहां दिल्ली के हॉल में बैठकर भी हमारे मन के अंदर बहुत आनंद और संतोष की अनुभूति होती है। मैं उन महिला जवानों को उनके अनुभव को यहां बैठकर महसूस करता था कि कितना रोमांच हुआ होगा जब आसमान को छूने वाली चोटी पर वंदे मातरम का वो गान करते होंगे और वो भी वंदे मातरम के 150वीं जयंती के वर्ष में एक गान गाने का सौभाग्य इनको मिला है। मैं फिर से एक बार बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्र, अटल जी के समय पर एक बॉर्डर एक बल ये सिद्धांत तय किया गया और उसके बाद बीएसएफ को देश की सबसे दो कठिन सीमाओं का काम दिया गया। पाकिस्तान से सटी हुई 1289 किलोमीटर की सीमा और बांग्लादेश से सटी हुई 4100 किलोमीटर की सीमा। हम सब जानते हैं कि सुरक्षा की दृष्टि से दोनों सीमाएं वल्नरेबल भी है और हमारे लिए चिंता का कारण भी है, परंतु उस वक्त भी सोच समझकर ही देश के प्रधानमंत्री और गृहमंत्री जी ने निर्णय किया होगा कि जो सबसे कठिन काम है वो बीएसएफ को दे दीजिए, बीएसएफ कभी दो कदम पीछे नहीं हटेगी। और मुझे कहते हुए आनंद है कि अब तक ये बॉर्डर दो बॉर्डर को आपके संभालने के बाद जितनी भी चुनौती आई इसमें पराजय का मुंह दुश्मन को ही देखना पड़ा है, कभी आपने भारत का सर नीचे नहीं होने दिया है। और आज हम देखते हैं कि कई प्रकार की नई चुनौतियां सीमा सुरक्षा में हमारे सामने खड़ी हुई है। अवैध घुसपैठ, नारकोटिक्स की तस्करी, गौ तस्करी, फेक करेंसी का चलन, संगठित अपराध, ड्रोन से हथियारों की और नशे की तस्करी, कई प्रकार की चुनौतियां बीएसएफ के सामने हैं। मगर बीएसएफ ने लगातार इसके लिए किसी न किसी प्रकार से इन चुनौतियों का सामना करने का सुनियोजित प्रयास किया है। और मैं आगे पर 60वें साल में भारत सरकार क्या करने वाली है वो भी बताऊंगा, मगर आपने आपके पास जो सीमित संसाधन थे वो सीमित संसाधन का सर्वोत्तम उपयोग करते हुए इस सभी चुनौतियों के साथ दो दो हाथ कर देश की सुरक्षा करने का काम किया है, जिससे हमें सुनिश्चितता है। आपकी भूमिका अब आने वाले दिनों में और ज्यादा अधिक इंटीग्रेटेड भी करनी पड़ेगी और व्यापक भी करनी पड़ेगी। अब हम केवल पारंपरिक तरीके से सीमाओं की सुरक्षा नहीं कर सकते, हमने राज्य पुलिस, सशस्त्र बल, अन्य सशस्त्र बल, एनसीबी

इंटेलिजेंस एजेंसियां और राज्य के प्रशासन इस सब के साथ मिलकर सुरक्षा की ग्रिड को मजबूत करना पड़ेगा, तभी जाकर हम ये नई चुनौतियों का सामना कर सकेंगे। और एक हमने सीमा सुरक्षा को एक आइसोलेटेड काम के रूप में देखने की जगह एक टेरिटोरियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में देखना पड़ेगा, तभी जाकर हमें सारी चुनौतियों को पार करने में सफल होंगे। सबसे महत्वपूर्ण है कि हमने आगे के खतरों को भी देखना पड़ेगा। हमारी जिम्मेदारी है कि देश के उस पार से कृत्रिम तरीके से जनसंख्यिकी में जो बदलाव किया जा रहा है घुसपैठ के द्वारा, उसको रोकने के लिए सतर्क और सजग रहना पड़ेगा। अर्थतंत्र पर नारकोटिक्स और फेक करेंसी के हमले से जिस प्रकार से हमारे अर्थतंत्र को खोखला करने का प्रयास हो रहा है, इसके लिए भी हमने सतर्क रहना पड़ेगा। साइबर चुनौतियां, हाइब्रिड वॉरफेयर और ड्रोन के खतरे, ये सभी के लिए एक नई रणनीति लेकर आना पड़ेगा। और मैं मानता हूं कि सीमा सुरक्षा बल ये करने में कभी पीछे नहीं हटेगा। मित्रों, आज सीमा सुरक्षा बल के काम का व्याप देखते हैं तो सियाचिन और कश्मीर की बर्फीली पहाड़ियां, कुपवाड़ा, केरन, उरी जैसे दुर्गम क्षेत्र, राजस्थान का रण, कच्छ का छोटा रण, सरक्रिक के दलदली नाले, सुंदरवन के घने जंगल और झरने, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम की कठिन पूर्वी सीमाएं और ब्रह्मपुत्र से जुड़े हुए कठिन संवेदनशील नदी क्षेत्र भी है। और ये सभी के बीच में सीमा सुरक्षा बल डटा हुआ है और इसी के कारण 1965 में महज 25 बटालियनों से अल्प संसाधनों के साथ शुरू हुआ सीमा सुरक्षा बल 270,000 की नफरी के साथ विश्व का सबसे बड़ा सीमा सुरक्षा बल बना है। ये हम सब के लिए बहुत गौरव की बात है। इस 8 साल की जर्नी में एक महावीर चक्र, 6 कीर्ति चक्र, 15 वीर चक्र, 13 शौर्य चक्र, 47 सेना मेडल और 1262 वीरता के लिए पुलिस पदक सीमा सुरक्षा बल ने अपने अदम्य साहस, वीरता और समर्पण के कारण अर्जित किए हैं, वो हम सब के लिए बहुत बड़ा गौरव का विषय है। मित्रों, 2014 में केंद्र में प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद हमारी रक्षा नीति और सीमाओं की सुरक्षा के बारे में हमारे नजरिए में हमने आमूलचूल परिवर्तन किया है। पाकिस्तान के द्वारा किए गए तीनों हमले, हमने इसका जवाब दिया है, चाहे उरी हो, पुलवामा हो या पहलगाम हो। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक कर, एक बार एयर स्ट्राइक कर और एक बार ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से पाकिस्तान के अंदर इनके मर्म स्थान पर प्रहार कर हमने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। वो जमाना चला गया जब आतंकी हमलों के बाद वार्ताएं हुआ करती थी, नक्सलवादी बेखौफ होकर जन नरसंहार करते थे और सरकारें वार्ता करती थी। हमने हमारे सुरक्षा परिदृश्य को भारत के संविधान के स्पिरिट से मजबूत बनाने का काम किया है और ये सब एक प्रकार से एक नई डिफेंस डॉक्ट्रिन का एक प्रकार से घोषणा है और मैं मानता हूं इसमें सीमा सुरक्षा बल का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अभी अभी ऑपरेशन सिंदूर में बहादुरी दिखाने वाले हमारे जवानों को

हमने यहां पर अलंकरण से नवाजा है, मगर मित्रों आने वाले दिनों में भारत सरकार ने सुनिश्चित किया है कि 60वां वर्ष हम सीमा सुरक्षा बल को पूर्णतया एक डिजाइन के तहत ये 6000 किलोमीटर लंबी सीमा पर एक समान स्मार्ट बॉर्डर बनाने में तकनीकी सहायता भारत सरकार करेगी, भारत सरकार का गृह मंत्रालय करेगा। इसके लिए छुटपुट छुटपुट कई सारे प्रयोग सीमा सुरक्षा बल ने कई सालों से किए, ये सारों का संकलन करते हुए एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा। और मैं मानता हूं ये लॉन्च होने के बाद सीमा सुरक्षा बल का काम काफी सरल भी होगा और मजबूत भी होगा, क्योंकि जब तकनीक आगे बढ़ रही हो तब हमने भी सुरक्षा में तकनीक का उपयोग करना पड़ेगा। इसके हर कंपोनेंट के लिए गृह मंत्रालय ने अनेक प्रकार की कवायद की है और लगभग लगभग एक इन टोटो स्मार्ट बॉर्डर के काम में हम बहुत नजदीक पहुंच गए हैं। मैं सीमा सुरक्षा बल के जवानों को भरोसा दिलाना चाहता हूं कि 60वें साल में ही हम स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट को लॉन्च कर बांग्लादेश और पाकिस्तान की पूरी सीमा को हम अभेद करेंगे और इससे आपके काम में आपको बहुत बड़ी तकनीकी सहायता उपलब्ध हो जाएगी। तकनीकी सहायता के बाद आपका पराक्रम, आपका शौर्य, आपका समर्पण, आपकी देशभक्ति के साथ साथ एक मजबूत सपोर्ट तकनीक का भी आपके पास उपलब्ध होगा, जिससे हम दोनों सीमाओं को सुरक्षित कर देंगे। मैं आज सीमा सुरक्षा बल के कार्यक्रम में आया हूं तब घुसपैठ पर भी बात करना चाहता हूं। भारत सरकार ने ये तय किया है कि हम न केवल घुसपैठ को रोकेंगे, एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालेंगे और हमारी जनसांख्यिकी में अकृत्रिम बदलाव नहीं होने देंगे। ये जो जनसांख्यिकी का बदलाव करने का षड्यंत्र है, इसको सीमा सुरक्षा बल ने रोकना है। और आज मैं बड़ी शांति से निश्चिंत मन से आपको कह रहा हूं कि अब त्रिपुरा, आसाम और पश्चिम बंगाल तीनों जगह ऐसी सरकारें हैं जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चुन चुन कर बंद करना, समाप्त करना ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। मगर मेरा सीमा सुरक्षा बल से भी आग्रह है कि आप भी केवल सीमा की जगह अब डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से लेकर पटवारी तक, एसपी से लेकर पुलिस के थाने के

इंचार्ज तक हमारा संवाद होना चाहिए और इनसे मिली हुई सारी इंफॉर्मेशन का उपयोग कर घुसपैठियों को निकालने की एक सुचारू व्यवस्था भी बनानी चाहिए, घुसपैठ को रोकने की भी व्यवस्था बनानी चाहिए। और मैं मानता हूं कि अब समय आ गया है कि सालों से जो घुसपैठ का कार्यक्रम बेरोक टोक चलता है उसको हमें रोक देना पड़ेगा। और ये आप सबने कर दिखाया है। मैं कई सारे रिटायर्ड पुलिस अफसरों ने मुझे कहा था कि नक्सल मुक्त अभियान हाथ में मत लीजिए, हो नहीं सकता, इनसे संवाद कीजिए। मुझे भी कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहा था, मगर भारत सरकार अड़ग रही। सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी, राज्य की पुलिसें सब लगे रहे और 5 दशक पुरानी समस्या आज देखते देखते देखते समाप्त होकर भारत नक्सल मुक्त हो चुका है। और ये हमारे जवानों ने कर दिखाया है कि समस्या को संभाल कर रखना, कंट्रोल में रखना, ये सुरक्षा का दृष्टिकोण नहीं हो सकता। समस्या को मूल समेत समाप्त करना ही सुरक्षा का दृष्टिकोण हो सकता है और वो आज सिद्ध हो चुका है। और अब घुसपैठ के लिए भी बीएसएफ ने इसी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ना चाहिए। वाइब्रेंट विलेज 1, वाइब्रेंट विलेज 2 आपके समर्थन में एक लोकतांत्रिक तरीके से चलाया गया विकास का कार्यक्रम है। बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र में 15 किलोमीटर तक जो अधिकार क्षेत्र था उसको बढ़ाकर हमने 50 किलोमीटर किया है और अब बंगाल सरकार ने भी जितनी भी भूमि देनी थी वो सारा देने का निर्णय कर चुके हैं, कुछ तो हैंडओवर भी कर दिए हैं। अब हमारे पास काम है कि इसको हम आगे बढ़ाएं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हाई पावर डेमोग्राफी मिशन की शुरुआत की है, कुछ ही दिनों में इसकी घोषणा हो जाएगी, इसका चार्टर भी बन जाएगा। हाई पावर डेमोग्राफी मिशन भी चिन्हित करे हुए पॉइंट्स को बीएसएफ के और सीमा सुरक्षा बल के जवानों के लिए उपलब्ध कराएगा। इस सब चीजों का उपयोग करते हुए हमें आने वाले दिनों में एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड दोनों देशों की सीमाओं के सीमा पर बनानी पड़ेगी और इसके लिए एक बहुत बड़ा अभियान भी चलाना पड़ेगा। मित्रों, जिस तरह से मैंने किया कहा कि 60वां वर्ष एक स्मार्ट बॉर्डर बनाने का वर्ष है, उसी तरह से 60वां वर्ष बीएसएफ के जवानों के कल्याण का भी वर्ष है। 2 महीने के अंदर ही नरेंद्र मोदी सरकार बीएसएफ और सभी सीएपीएफ के जवानों के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम लेकर आएगी जिससे हमारे जवान सुनिश्चित होकर सीमाओं की सुरक्षा करें, उनके परिवारजनों की चिंता भारत सरकार का गृह मंत्रालय करे। इस प्रकार का एक कार्यक्रम भी हम आने वाले 1 साल के अंदर लेकर आएंगे। हमने एक बहुत बड़ा अभियान कुछ समय के बाद नारकोटिक्स के खिलाफ भी देश में चलाने जा रहे हैं, इसमें भी सीमा सुरक्षा बल की बहुत अहम भूमिका रहने वाली है। और सीमा सुरक्षा बल की सतर्कता से दोनों ओर की सूचना एकत्रित कर नारकोटिक्स के खिलाफ लड़ाई में भी आपका बहुत बड़ा योगदान है। मित्रों, आने वाले 3-4 साल एक प्रकार से सीमा की सुरक्षा में संपूर्ण बदलाव के 4 साल रहने वाले हैं और हमने इसके लिए अभी से कमर कसनी है, मन से तैयारी करनी है। तकनीक की सुरक्षा आने से जवानों की जिम्मेदारी कम नहीं होती, तकनीकी सुरक्षा का सपोर्ट आने से जवानों की जिम्मेदारी बढ़ती है। ये भाव के साथ तकनीक को आत्मसात करते हुए, स्थानीय लोगों से संवाद प्रस्थापित करते हुए, स्थानीय प्रशासन से तालमेल बढ़ाते हुए हम सब एक बार लक्ष्य तय कर ले कि इस देश को घुसपैठ से मुक्त करना है और हमारी जनसांख्यिकी के

0: कृत्रिम परिवर्तन को हम रोकने में सफल हो तो मुझे नहीं लगता कि यह बहुत कठिन काम है। मैं आप सभी से अपेक्षा करता हूं कि आने वाले दिनों में जो अभियान चलने वाला है उसमें आपका पूर्ण मनोयोग के साथ सहयोग मिलेगा और हम एक नई सुरक्षा ग्रिड का निर्माण पश्चिमी और पूर्वी दोनों सीमाओं पर बनाने में सफल होंगे। फिर से एक बार श्रीमान रुस्तम जी को मन पूर्वक नमन भी करना चाहता हूं और उनके काम की सराहना भी करना चाहता हूं और जिन जवानों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो सबको श्रद्धांजलि देकर मेरी वाणी को विराम देता हूं। वंदे मातरम।
1: भविष्य में स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट लॉन्च होगा और मजबूत सुरक्षा ग्रिड के लिए अभियान चलेगा और अभियान में सहयोग की भी आवश्यकता है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अपने विचारों के साथ।
2: जो महोदय के हृदय में इस दिवस की याद को हमेशा संजोए रखेगा।
1: और अब सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक श्री प्रवीण कुमार द्वारा मुख्य अतिथि को स्मृति चिन्ह भेंट स्वरूप प्रदान किया जा रहा है। स्मृति चिन्ह।
2: धन्यवाद श्रीमान। और
3: महानिदेशक Border Security Force, Shri Praveen Kumar.
1: विशेष महानिदेशक द्वारा धन्यवाद।
4: माननीय श्री अमित शाह जी, केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री भारत सरकार, श्री तपन डेका डायरेक्टर आसूचना ब्यूरो, श्री राजेंद्र कुमार सचिव सीमा प्रबंधन, श्री प्रवीण कुमार महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण, सभागार में उपस्थित विशिष्ट अतिथिगण, हमारे मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान 2026 के इस गौरवपूर्ण अवसर पर आप सभी की उपस्थिति ने इस आयोजन को अत्यंत सार्थक और गरिमामयी बना दिया है। आपके सानिध्य और समय के लिए मैं सीमा सुरक्षा बल परिवार की ओर से आप सभी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि माननीय श्री अमित शाह जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूं। मान्यवर, आपने अत्यंत व्यस्तता के बीच इस कार्यक्रम के लिए समय निकालकर न केवल हमारा मान बढ़ाया है बल्कि यह दर्शाया है कि सीमा प्रहरियों के प्रति आपका स्नेह, सम्मान और विश्वास अटूट है, जो कि हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। आपकी गरिमामयी उपस्थिति और प्रेरणादायी शब्दों ने हम सभी का उत्साह बढ़ाया है तथा हमें नई ऊर्जा प्रदान की है। हम पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उन्हें अपने जीवन में अपनाते हुए अपने कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करने का संकल्प करते हैं। सीमा सुरक्षा बल परिवार अपने सभी विशिष्ट अतिथियों का भी हार्दिक आभार प्रकट करता है। आपके निरंतर सहयोग और विश्वास ने हमें सदैव आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। हमें आशा है कि भविष्य में भी आपका स्नेह और मार्गदर्शन यूं ही बना रहेगा। मैं मीडिया के यहां उपस्थित प्रतिनिधियों का भी विशेष धन्यवाद करता हूं। मैं आयोजन समिति के समस्त अधिकारियों एवं कर्मियों का विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस व्याख्यान के सफल आयोजन में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। धन्यवाद। जय हिंद।
3: श्री महेश अग्रवाल, स्पेशल डीजी ऑफ द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। एंड नाउ दिस विल बी फॉलोड बाय
5: सीमा सुरक्षा बल अलंकरण समारोह एवं रुस्तम जी स्मृति व्याख्यान सिर्फ सीमा सुरक्षा बल ही नहीं बल्कि संपूर्ण राष्ट्र का समारोह है। राष्ट्रीय महत्व के इस विशेष अवसर पर अब समय है एक ही क्रम में पहले राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम एवं तत्पश्चात राष्ट्रगान जन गण मन में शामिल होने का। इसे प्रस्तुत करेंगे भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से आए युवा कलाकार।

0: to the end of the 23rd investiture ceremony of the Border Security Force. And, well, the last two items, the national song and the national anthem. And with that, we see the Home Minister making exit from the plenary hall. And it was a wonderful occasion. People, I'm sure, are really going to cherish this all their life, all the members of the Border Security Force who have been here. And it's been a wonderful experience, a wonderful message on the Rustam G. Memorial Speech lecture by the Home Minister, Shri Amit Shah.
1: आज का ये अलंकरण समारोह साहस समर्पण और राष्ट्र सेवा की गौरवपूर्ण परंपरा का प्रतीक है हम उन वीर जवानों को नमन करते हैं जिन्होंने अपने कर्तव्य को हमेशा सर्वोपरि रखा सीमा सुरक्षा बल द्वारा आयोजित आज के कार्यक्रम में न केवल हमारे वीर जवानों के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित किया बल्कि हमें राष्ट्र सेवा के मूल्यों और अधिक गहराई

0: से समझने की प्रेरणा भी प्रदान की इन ऐतिहासिक क्षणों को समेटे मैं प्रीति मोहन अपने साथी कमेंटेटर डी एंड्रयू ओबी इंचार्ज प्रोग्राम एग्जीक्यूटिव वी के तोमर इंजीनियरिंग स्टाफ अशोक कुमार मिश्रा कमल सिंह हेमराज मीणा और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता प्रमोद कुमार के साथ आपको आकाशवाणी के स्टूडियो वापस लिए चलती हूं नमस्कार
1: सुनिली 23तम सीमा सुरक्षा बाहिनीर अलंकरण उत्सव रे माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाहंक देशवासीं को उद्बोधन रिले करी प्रचार कलु आकाशवाणी दिल्ली रो श्रोता बंधु वर्तमान आपण मैंने कार्यक्रम शुणुंती आकाशवाणी भवानीपाटना केन्द्र रो कार्यक्रम आम केन्द्र रो प्रचारित होउछि मीडियम वेवरे 248 मीटर तथा 1206 किलो हर्स जोगे एफएम माध्यम रे 100.3 मेगा हर्स जोगे एवं न्यूजन एआईआर एप माध्यम रे प्रचार करुछो आदिवासी गीत क्रम रे किसान गीत परिवेषण करुछंती गबलु माझी एवं साथी

भला रे बुआस मालिन तंग दास मा मालिन तेंगी काटी बाबू सु ज्ञान का थाना तेंगो से एक

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के, अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ଶିଶୁ ଆକାଶବାଣୀ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली के हैदराबाद हाउस में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर बातचीत की। बातचीत के बाद इस समय समझौता ज्ञापनों का आदान प्रदान किया जा रहा है। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिन की भारत यात्रा पर हैं। उनके साथ एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स की भारत की ये पहली यात्रा है। श्री क्रिस्टोडोलाइट्स आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
1: निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने समाप्त हो रहा है। आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की भी घोषणा की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधा कृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधा कृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। उन्होंने उनके आगामी कार्यकाल के सफल होने की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स इस समय संयुक्त प्रेस सम्मेलन को संबोधित कर रहे हैं। आइए सुनते हैं।
3: पूरी विजिट के दौरान आपकी आत्मीयता, आपका स्नेह और भारत के प्रति आपका विशेष जुड़ाव हमने बहुत गहराई से महसूस किया और आज आपकी भारत यात्रा हमारी शेयर्ड जर्नी का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव है। फ्रेंड्स, भारत और साइप्रस की मित्रता मजबूत भी है और फ्यूचरिस्टिक भी है। लोकतंत्र और रूल ऑफ लॉ जैसे मूल्यों में साझा विश्वास हमारी साझेदारी के आधार है। हम सभी देशों की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं। भारत इन सिद्धांतों के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है और आगे भी रहेगा।
1: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा को चुनौतियों से निपटने के लिए व्यापक क्षेत्रीय जिम्मेदारी के तौर पर देखा जाना चाहिए। आज नई दिल्ली में सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह को संबोधित करते हुए श्री शाह ने कहा कि कई तरह की कमजोरियों और चुनौतियों के बावजूद बल ने लगातार देश के गौरव को बनाए रखा है। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 0.7% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। इसके साथ ही

0: 1, 2, 3, 4.
1: सुनो चाय नियो। अरे चाय नियो मो।
0: गला।
1: कौन है मिति गानी पकाऊं चाचे?
0: अरे खबर कागजर चारी पृष्ठा उल्टे लेनी स्थानीय खबर कोटे भी नहीं।
1: ओहो, अरे बाबा इतने कहीं की? आमो रेडियो टा ऑन कलनी? मीडियम वेव्रे 248 मीटर तथा 1206 किलोहर्ट्ज जोगे एफएम माध्यम रे 100.3 मेगाहर्ट्ज जोगे बा न्यूज ऑन एआईआर एप माध्यम रे आमो आकाशवाणी भवानी पटना ट्यून करो प्रत्येक दिन सकाळ 10टा बजे 10 मिनिट रु 11टा बजे 10 मिनिट जाए स्थानीय खबर आ मनपसंदर गीत को नी कार्यक्रम खोर

0: पॉडकास्ट और वायरल रील्स के शोर में सोचो असली ओजी कौन है। बॉस रेट्रो इज द न्यू कूल और इंडिया का सबसे पहला ट्रेंड सेटर है अपना आकाशवाणी। वही सुकून वाली वाइब, म्यूजिक और सॉलिड इन्फो पूरे 90 सालों से नॉन स्टॉप ट्रेंडिंग। ट्यून इन करो क्योंकि लेजेंड्स कभी आउटडेटेड नहीं होते। आकाशवाणी 90 ईयर्स से इंडिया की ओरिजिनल आवाज।
1: अच्छा दास बाबू, आपण घर 1970 तैयारी थिला राइट? हेले ए पर्यंत एते स्ट्रांग केमिति अछि?
2: अरे एटा एकदम सिंपल एवं सहीथि पई मु सेते बेले मोर विश्वास रखी दिली एवं आज मध्य चेटिनाड सीमेंट उपरे
3: शक्ति जहां वर्ष वर्ष नुहे बरम पीढ़ी पाई रही थाए। चेटिनाड सीमेंट सुपर ग्रेड सीमेंट 64 वर्षर दृढ़ मूल दुआ। चेटिनाड सीमेंट द परफेक्ट कंक्रीट चॉइस।
4: श्रोता बंधु आपण मैंने संगीतर भिन्न भिन्न स्वाद उपरे आधारित कार्यक्रम विचित्र शुणुछंती आकाशवाणी भवानीपाटणा केन्द्र। कार्यक्रम आम केन्द्र प्रचारित होउछि मीडियम वेव्रे 248 मीटर तथा 1206 किलोहर्ट्ज जोगे, एफएम माध्यम 100.3 मेगाहर्ट्ज जोगे, न्यूज़ ऑन

छुटिया मूसा छुरे छुरे छुरे छुरे छुटिया मूसा बार बुढ़ी के कपाल पुसा छुरे छुरे छुटिया मूसा बार बुढ़ी के कपाल पुसा छुरे छुरे छुरे छुरे छुटिया मूसा बार बुढ़ी के कपाल।

0: से अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा तथा अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
1: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं।
1: यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, हम संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते रहेंगे। हम इस बात पर भी एकमत है कि बढ़ते हुए ग्लोबल चैलेंजेस के समाधान के लिए ग्लोबल इंस्टीट्यूशन का रिफॉर्म अर्जेंट और इम्पोर्टेंट है।
0: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टोडोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। साइप्रस के राष्ट्रपति 4 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए श्री क्रिस्टोडोलाइट्स का ये पहला भारत दौरा है। साइप्रस के राष्ट्रपति आज शाम राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भेंट करेंगे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। भारत की यात्रा पर रवाना होने से पहले अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भारत को एक महान साझेदार बताते हुए कहा कि इस यात्रा के दौरान उन्हें क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों से मिलने का अवसर मिलेगा।
2: भारत के साथ बहुत कुछ करने को है। वो एक महान सहयोगी और साझेदार है। यह एक महत्वपूर्ण यात्रा है। मुझे लगता है कि हमारे पास बात करने के लिए बहुत कुछ होगा और हम वहाँ क्वाड के साथ भी बैठक करेंगे। विदेश मंत्री के रूप में मेरी पहली बैठक क्वाड के साथ ही हुई थी। मुझे खुशी है कि हम अब भारत में यह बैठक कर पा रहे हैं और हम इस साल के अंत में भी एक और बैठक करेंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की है। पूर्व प्रधानमंत्री एच

0: देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। एक रिपोर्ट।
1: आंध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक की 4, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3, झारखंड की 2 और मणिपुर, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम की 1-1 सीट के लिए चुनाव होगा। अधिसूचना 1 जून को जारी की जाएगी और मतदान 18 जून को होगा। मतगणना भी उसी दिन होगी। आयोग ने महाराष्ट्र और तमिलनाडु में राज्यसभा की 1-1 सीट के लिए उपचुनाव की घोषणा की है। ये सीटें महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार और ऑल इंडिया अन्ना डीएमके सांसद षणमुगम के राज्य विधानसभा के लिए हाल ही में निर्वाचित होने के बाद खाली हुई है। उपचुनाव भी अगले महीने की 18 तारीख को होगा। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ अमीशा।
0: केरलम में 7 बार के कांग्रेस विधायक तिरुवंचूर राधाकृष्णन को 16वीं केरलम विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया है। विधानसभा के इतिहास में पहली बार इस चुनाव में सत्ताधारी यूडीएफ, वामदल और भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार मैदान में थे। एक रिपोर्ट।
2: 140 सदस्यों वाली विधानसभा में सत्तारूढ़ यूडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार तिरुवंचूर राधाकृष्णन 101 वोटों के साथ स्पीकर चुने गए। विपक्षी एलडीएफ गठबंधन के उम्मीदवार एसी मोहिद्दीन को 35 वोट मिले, जबकि भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बीबी गोपाकुमार को 3 वोट हासिल हुए। ये पहली बार है जब भारतीय जनता पार्टी ने केरल में स्पीकर पद का चुनाव लड़ा है। डिप्टी स्पीकर के लिए चुनाव 1 जून को होगा। तिरुवनंतपुरम से स्मिति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने तिरुवंचूर राधाकृष्णन को अध्यक्ष चुने जाने पर बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री बिरला ने विश्वास व्यक्त किया कि श्री राधाकृष्णन का व्यापक विधायी अनुभव और संसदीय परंपराओं की गहरी समझ सदन को निष्पक्षता, बुद्धिमत्ता और गरिमा के साथ मार्गदर्शन प्रदान करेगी। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने वाली सीबीआई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जयमाल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया। उन्होंने कहा कि ये जनहित याचिका छात्रों, शिक्षकों और अभिभावकों द्वारा दायर की गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज उमर खालिद को वर्ष 2020 के उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगों में कथित बड़ी साजिश से जुड़े गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए मामले में 3 दिन की अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति मधु जैन की खंडपीठ ने उन्हें 1 जून से 3 जून तक कड़ी शर्तों के साथ रिहा करने की अनुमति दी। खालिद ने अपने दिवंगत चाचा के 40वें में शामिल होने और अपनी मां की शल्य चिकित्सा के दौरान उनकी देखभाल करने के लिए 15 दिन की अंतरिम जमानत मांगी थी। दिल्ली की एक अदालत ने आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े कथित धनशोधन मामले में राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव, उनके परिवार के सदस्यों और अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय करने का फैसला 9 जून तक के लिए टाल दिया है। इस मामले की जांच प्रवर्तन निदेशालय ईडी कर रहा है और ये केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई द्वारा दर्ज एक मूल अपराध पर आधारित है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय और पत्रकार सौरभ दास को एक आपराधिक अवमानना याचिका के मामले में नोटिस जारी किया। यह याचिका आबकारी नीति मामले में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को निशाना बनाने वाली कथित तौर पर अपमानजनक और अवमाननापूर्ण सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर दायर की गई थी। रेल, सूचना प्रौद्योगिकी तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव 2 दिन के राजस्थान दौरे पर हैं। उन्होंने जोधपुर रेलवे स्टेशन से दिल्ली कैंट के लिए 20 डिब्बों वाली वंदे भारत एक्सप्रेस को रवाना किया। इस रेलगाड़ी में पहले 8 डिब्बे थे। इस अवसर पर उन्होंने भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोच कार्यशाला के 2रे चरण की भी घोषणा की। उन्होंने जैसलमेर स्टेशन पर नवनिर्मित कोच केयर कॉम्प्लेक्स का वर्चुअल उद्घाटन भी किया। संवाददाताओं से बातचीत में श्री वैष्णव ने कहा कि पूरे देश में रेल संपर्क तेजी से बढ़ रहा है। रेल मंत्री आज शाम जालौर जाएंगे, जहां वे नई भुज बरेली एक्सप्रेस को रवाना करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे।
3: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट

0: के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय ड्रोन रडार आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृहमंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है।

0: लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृह मंत्री ने कहा कि बीएसएफ ने 1965 में 25 बटालियन और सीमित संसाधनों के साथ शुरुआत की थी। लगभग 2,70,000 कर्मियों की संख्या के साथ अब यह सीमाओं की रक्षा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा बल बन गया है। उन्होंने कहा कि सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर किया जाएगा। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में रक्षा मंत्री ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री एक ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास समृद्ध राजनीतिक और विधायी अनुभव है। विज्ञान प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान के केंद्रीय राज्य मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह ने भारत के चंद्रयान 3 चंद्र मिशन को अमेरिका विमानन और अंतरिक्ष संस्थान द्वारा 2026 के गोडार्ड अंतरिक्ष पुरस्कार से सम्मानित किए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ. सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 मिशन देश को गौरवान्वित करता रहा है। पंजाब पुलिस ने देश भर के स्कूलों और अन्य संवेदनशील स्थानों पर बम की धमकी भरे ईमेल भेजने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करने में बड़ी सफलता हासिल की है। आरोप है कि इस गिरोह में बांग्लादेश और पाकिस्तान में रहने वाले लोग शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @ATIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। हिमाचल प्रदेश में आज सुबह से कई स्थानों पर रुक रुक कर बारिश हो रही है। मौसम के इस बदलाव से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। एक रिपोर्ट।
2: राजधानी शिमला सहित चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, हमीरपुर व लाहौल स्पीति जिलों में हल्की वर्षा होने से प्रदेश भर में तापमान में हल्की गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से मौसम में यह बदलाव आया है। विज्ञान केंद्र शिमला ने प्रदेश में 7 जिलों कुल्लू, शिमला, चंबा, ऊना, हमीरपुर, मंडी और बिलासपुर में अनेक स्थानों पर अगले 48 घंटों में बारिश के साथ अंधड़ और तेज हवा चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रितेश कपूर, आकाशवाणी समाचार, शिमला।
1: सरकार ने आज सूचित किया कि ईद उल अजहा बकरीद पर दिल्ली के सभी केंद्रीय सरकारी कार्यालय 28 मई को बंद रहेंगे। पहले यह छुट्टी 27 मई को निर्धारित थी। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ वार्ता की। श्री मोदी ने कहा, भारत और साइप्रस का लक्ष्य अगले 5 वर्ष में निवेश को दोगुना करना। 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव की घोषणा, मतदान 18 जून को। सर्वोच्च न्यायालय कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन 1 जुलाई से अनिवार्य करने के CBSE के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के विदर्भ में कल तक भीषण लू की चेतावनी। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। भारत और साइप्रस ने आज आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने बहुपक्षीय मंचों में सहयोग सहित क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त वक्तव्य में कहा कि भारत और साइप्रस के बीच मित्रता न केवल मजबूत है बल्कि भविष्योन्मुखी भी है। उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
1: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से

0: भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है, दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले कुछ वर्ष में साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग बढ़ा है।
0: हमें बहुत खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में दोनों देशों के बीच मिलिट्री एक्सचेंज और ट्रेनिंग सहयोग बढ़े हैं। आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देश यूक्रेन और पश्चिम एशिया संघर्ष की शीघ्र समाप्ति और शांति के प्रयासों का समर्थन करते हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। इससे पहले आज सुबह विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने साइप्रस के राष्ट्रपति से मुलाकात की। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉ जयशंकर ने कहा कि उन्होंने दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने और भारत यूरोपीय संघ सहयोग के लिए राष्ट्रपति क्रिस्टो डोलाइट्स के विचारों और मार्गदर्शन की सराहना की। निर्वाचन आयोग ने आज 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों के लिए द्विवार्षिक चुनाव कार्यक्रम की घोषणा कर दी। पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवेगौड़ा, केंद्रीय मंत्री जॉर्ज कुरियन और रवनीत सिंह सहित कई सदस्यों का राज्यसभा का कार्यकाल अगले महीने पूरा हो रहा है। सर्वोच्च न्यायालय पहली जुलाई से कक्षा 9 के छात्रों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के सीबीएसई के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति जॉय माल्या बागची तथा विपुल एम पंचोली की पीठ के समक्ष ये मामला उठाया था। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में आज सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के अलंकरण समारोह में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार ने बीएसएफ के अधिकार क्षेत्र को 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर कर दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठी को देश से बाहर करेगी। राजस्थान उच्च न्यायालय ने आज राज्य सरकार और राज्य चुनाव आयोग को पंचायत तथा शहरी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जुलाई तक कराने के निर्देश दिए। न्यायालय ने इन चुनावों को दिसंबर तक स्थगित करने के सरकार के अनुरोध को खारिज कर दिया। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश एसपी शर्मा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने चुनाव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग को 20 जून तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया। इस मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय ने 11 मई को अपना निर्णय सुरक्षित रखा था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। इससे पहले श्री अधिकारी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। वे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भी मिले। आईपीएल क्रिकेट में आज सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बंगलुरु से होगा। ये मैच हैदराबाद में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Valsa Williams. India and Cyprus exchanged several agreements in different areas, including establishing a joint working group on counterterrorism, innovation and technology, higher education and research, and cultural cooperation in New Delhi today. Prime Minister Narendra Modi held discussion with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, on strengthening bilateral cooperation across a wide spectrum of areas. They also exchanged views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. Prime Minister Modi said during the meeting they also discussed global issues.
0: Bharat aur Cyprus ke beech ye strategic partnership dono deshon ke financial aur services hub ko jodkar कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रा

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
2: स्वागत है आप सबका आज के उमंग कार्यक्रम में विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार आइए करते हैं शुरुआत एक बार फिर से एक सुंदर विचार से जिसे हमें भेजा है नजदीक बस स्टैंड बुर्ज हनुमानगढ़ फजील का पंजाब से रमन वर्मा अमन वर्मा दिव्यांश वर्मा और डॉक्टर मदनलाल वर्मा जी ने
2: जब तक इंसान खुद पर भरोसा नहीं करता तब तक इंसान को छोटी से छोटी मुसीबत भी बड़ी पहाड़ सी लगती है इसलिए चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों न हो उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए सही हिम्मत के दम पर वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कठिनाई को भी आसानी से पार कर सकता है
0: बहुत बहुत धन्यवाद आपके इतने सुंदर विचार के लिए और अब बारी है श्रोताओं के नाम और उनके संदेशों को सुनने की तो पहला संदेश हमें मिला है पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू
2: मिलाई छत्तीसगढ़ से भाई मुकेश वर्मा श्रीमती सविता शर्मा गौरव गरिमा शर्मा
0: और संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव ज्योति यादव और ओजस्वी यादव
2: पगबंदी जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ से कन्हैया लहरे और सेवती लहरे
0: और ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे राधेश्याम नागनपुरे वंदना भावना बिंदु गोलू और कुसुम्बाई
2: ग्राम व पोस्ट बिरखेरा जिला हमीरपुर उत्तर प्रदेश से मनीराम पाल मलखान सिंह पाल सुधांशु पाल और हिमांशु पाल
0: बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं आपके संदेशों के लिए स्वागत है एक बार फिर से आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में

0: तो आइए चलते हैं इसकी अगली कड़ी में। श्रोताओं, कल हमने चर्चा की थी पश्चिमी घाट के वर्षा वनों की और ली थी ढेर सारी रोचक जानकारियाँ। तो विमलेश जी, आज की हमारी चर्चा का विषय तो बताइए हमारे श्रोताओं को।
1: जी अजीत जी, वर्षा वनों की तो चर्चा हो गई, अगली कड़ियों में हम भारत के अन्य वर्षा वनों की भी जानकारी लेंगे, लेकिन आज हम बात करेंगे एक और प्रकार के वन के बारे में।
0: जी,
1: वो वन है सुंदरवन। इस स्थान को हम सुंदरवन का डेल्टा भी कहते हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियाँ इस डेल्टा का निर्माण करती हैं। ये नदियाँ बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं।
0: जी, वही सुंदरवन ना जो पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में है।
1: बिल्कुल सही,
0: ये तो सचमुच एक अद्भुत वन है, रहस्यों और रोमांच से भरा हुआ। तो फिर आप ही चर्चा को आगे बढ़ाइए ना।
1: जी जी जी, तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि ये कहाँ है। ये भारत के पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश में फैला हुआ है, भारत में 40% और बांग्लादेश में 60%। अजीत जी, आपने भी सुना होगा कि अक्सर लोग कहते हैं कि सुंदरवन वर्षावन या रेन फॉरेस्ट है।
0: जी, सुना तो है,
1: जबकि तथ्य बिल्कुल अलग है।
0: अच्छा,
1: सुंदरवन दरअसल तकनीकी रूप से वर्षावन नहीं है।
0: क्यों?
1: ये मैंग्रोव वन है। तो आइए श्रोताओं, वर्षावन और मैंग्रोव वन के अंतर को समझते हैं।
0: जी विमलेश जी, देखिए श्रोताओ, रेन फॉरेस्ट या वर्षा वन वो होते हैं जहाँ बहुत अधिक वर्षा होती है।
1: जी।
0: वर्षा के कारण घने जंगल होते हैं और पेड़ जमीन पर ही उगते हैं।
1: जी।
0: लेकिन मैंग्रोव वन में ऐसा नहीं है। लेकिन इससे पहले कि आगे चले, हमें ये जरूर जान लेना चाहिए कि मैंग्रोव वन को हिंदी में क्या कहेंगे।
1: वैसे तो मैंग्रोव वन ही प्रचलित है, लेकिन इसे हिंदी में ज्वारीय वन भी कहा जा सकता है। ऐसा इसलिए कि यहाँ वन ज्वार भाटा के प्रभाव से विकसित होते हैं। सागर से जुड़े होने के कारण सुंदरवन में पेड़ पौधे खारे अर्धखारे पानी से उगते हैं। ये जानना रोचक होगा कि मैंग्रोव शब्द पुर्तगाली भाषा से लिया गया है, जिसका अर्थ है दलदली पेड़ों का जंगल।
0: जी, मैंग्रोव वनों की मिट्टी दलदली होती है। सुंदरवन एक ऐसा ही वन है, यहाँ भी वर्षा होती है और हरियाली भी बहुत है, लेकिन यहाँ की पारिस्थितिकी या इकोसिस्टम अलग होने के कारण ये वर्षा वन नहीं कहलाता।
1: जी
0: विमलेश जी, अभी कुछ देर पहले आपने कहा था कि वर्षा वन में पेड़ पौधे जमीन पर ही उगते हैं, ऐसा क्यों कहा था आपने?
1: अजीत जी, बड़ा रोचक प्रश्न पूछा है आपने। जी हाँ, वर्षा वन के पेड़ जमीन पर ही उगते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पेड़ पानी पर भी उगते हैं, जो बड़े अनोखे होते हैं। ऐसा इसलिए कि सुंदरवन में रोज दिन में 2 बार ज्वार भाटा आता है। यहाँ के कुछ इलाके 6 घंटे पानी में डूबे होते हैं और बाकी के 6 घंटे पानी के बाहर। इसलिए यहाँ के पेड़ों की जड़ें पोषण लेने के लिए पानी के बाहर निकली हुई होती हैं।
0: विमलेश जी, कहा जाता है कि यहाँ के पेड़ चलते हैं।
1: चलते हैं, ऐसा वाला कैसे हो सकता है?
0: दरअसल चलते नहीं हैं, ये चलते हुए लगते हैं। होता ये है कि ज्वार के आने से जब मिट्टी कट जाती है तो नए पौधे पानी में सरकते हुए वहाँ आगे चले जाते हैं जहाँ मिट्टी है। तो ऐसा लगता है कि पूरा जंगल खिसक रहा है।
1: सचमुच प्रकृति बड़ी अनोखी है। एक बात और बता दूं श्रोताओं को, बड़ी रोचक है, ध्यान से सुनिएगा श्रोताओं। क्योंकि सुंदरवन में मीठे पानी और खारे पानी दोनों मिश्रित हैं, ऐसे में मैंग्रोव के पौधों को जीने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है।
0: लेकिन भला वो कैसे?
1: वो ऐसे कि जीवित रहने के लिए मैंग्रोव वन के पौधे एक विशेष प्रक्रिया के द्वारा खारे पानी का नमक छानकर निकाल देते हैं, यानी उन्हें समुद्र के खारे पानी से लड़ना पड़ता है। साधारण पेड़ पौधे खारे पानी से मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वनों में पत्तियां और जड़ें नमक को छानकर निकाल देती हैं। और हाँ अजीत जी, जब सुंदरवन की बात चल ही रही है, तो वहाँ के विशेष प्राणी बंगाल टाइगर की चर्चा कैसे छूट सकती है?
0: जी विमलेश जी, इन्हें रॉयल बंगाल टाइगर भी कहते हैं।
1: जी,
0: आपको जानकर आश्चर्य होगा कि हर बाघ के शरीर की धारियाँ एक दूसरे से बिल्कुल अलग होती हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे हम इंसानों की फिंगरप्रिंट्स एक दूसरे से नहीं मिलती।
1: जी,
0: इन्हें घने जंगलों में पानी के पास रहना पसंद होता है, क्योंकि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं।
1: सुंदरवन में सफेद बाघ भी पाए जाते हैं। ये बाघ दुनिया में एकमात्र ऐसे हैं जो खारा पानी भी पी सकते हैं।
0: और हाँ, यूनेस्को ने सुंदरवन को वर्ल्ड हेरिटेज या विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है।
1: जी,
0: जी हाँ, सुंदरवन दुनिया का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। ये दुनिया की सबसे रोमांचक जगहों में से एक है।
1: बंगाल टाइगर, मगरमच्छ, मीठा पानी, खारा पानी, जीवित रहने के लिए नमक को छानकर बाहर निकालने वाले पेड़, जैव विविधता, खिसकने वाले और पानी में जड़ जमाने वाले पेड़, रातों को एक विशेष प्रकार के फंगस से निकलता हल्का नीला प्रकाश और ज्वार भाटा, कुल मिलाकर सचमुच हमारा सुंदरवन बहुत ही रोचक और रहस्यमय है।
0: जी हाँ श्रोताओ, और आइए अब अंत में जानते हैं कि भारत में और कहाँ कहाँ मैंग्रोव वन है।
1: सुंदरवन के अलावा उड़ीसा में भितरकानिका, तमिलनाडु में पिचवरम और आंध्र प्रदेश में गोदावरी कृष्णा नदी का डेल्टा।
0: तो श्रोताओ, ये थी जानकारी मैंग्रोव वनों की और विशेष करके सुंदरवन की।
1: जी,
0: अब सुनिए आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से। आज का प्रश्न है,
1: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
0: साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों? भेज दीजिए अपना उत्तर हमारे IVRS नंबर 8800

0: 4045509 पर। और हाँ, आप हमारे ईमेल पर भी यानी audio@ciet.nic.in पर भी हमारे प्रश्नों के जवाब और संदेश भेज सकते हैं।
1: एक्स, इंस्टा, फेसबुक और लिंक्डइन पर भी आप सीआईटी एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं।
0: और अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। हमारा पहला कार्यक्रम है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर।
1: कक्षा दो की अंग्रेजी की पुस्तक की एक लघु कविता पर आधारित ये कार्यक्रम विशेष रूप से संदेश देता है कि हमारे द्वारा किए जाने वाले छोटे छोटे कार्यों में भी अगर लगन और निरंतरता बनी रहे तो उनके द्वारा बड़े बड़े आश्चर्यजनक परिणाम प्राप्त किए जा सकते हैं।
0: CIET NCERT presents the program Little Drops of Water

0: अभी आपने सुना ये खूबसूरत कार्यक्रम, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मर्दा थिमक्का।
1: ये कार्यक्रम एक महान पर्यावरण संरक्षिका सालू मर्दा थिमक्का के जीवन और पर्यावरण के संरक्षण में उनके द्वारा दिए गए योगदान की जानकारी देता है। कार्यक्रम एक नाटक के द्वारा प्रस्तुत किया गया है।

CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है विशेष उपलब्धियों को प्राप्त करने वाली महिलाओं के जीवन पर आधारित श्रृंखला छू लूं मैं आकाश।

0: इस श्रृंखला के अंतर्गत प्रस्तुत है कार्यक्रम वृक्ष माता सालू मर्दा थिमक्का।
1: भारत में प्राचीन काल से ही पेड़ पौधों और वनस्पति को आदर देने का शास्त्रीय और सामाजिक प्रचलन रहा है। वेदों और अन्य शास्त्रों में हमें ऐसे मंत्र और विवरण प्रचुरता से मिलते हैं। भारत की जनजातीय संस्कृति में पर्यावरण से संबंधित पर्व त्योहार, लोक कथाओं और रीति विधियों की भरमार है।
2: शेष विश्व ने बहुत बाद में ये महसूस किया कि पर्यावरण और पारिस्थितिकी में पेड़ पौधों और वनस्पति का सीधा संबंध जीवन के अस्तित्व से है।
1: ऐसे में हमारा ध्यान जाता है उन महान व्यक्तित्वों पर जिन्होंने पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज हम बात करेंगे एक विलक्षण पर्यावरणविद स्त्री की जिन्होंने पर्यावरण के संरक्षण में अभूतपूर्व काम किया है।
2: लेकिन कैसे हुआ ये सब? किन बातों ने उन्हें प्रेरित किया पर्यावरण की सेवा करने के लिए? आइए जानते हैं। इनका नाम है
3: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।

श्रीमती थिमक्का। इनका जन्म 8 जुलाई 1911 में दक्षिण भारत के कर्नाटक राज्य के तुमकुरु जिले के गुब्बी गांव में

0: हुआ था। श्रीमती थिमक्का कर्नाटक में ही रहती हैं। ये बहुत ही निर्धन परिवार से आती हैं। पैसे के अभाव के कारण इन्होंने जंगल में मवेशी चराने का काम किया और बाद में एक स्थानीय खदान में दैनिक वेतन भोगी के रूप में कार्य करना शुरू किया। इन्हें पौधों से बहुत प्यार था।
1: समय बीतता गया। गरीबी और सुविधाओं की कमी के कारण वो कभी स्कूल नहीं जा पाई।
0: खदान में काम करते करते उनका विवाह पास के ही होलिकल गांव के श्री बिक्काला चिकैया से हो गया और वो दोनों अपने दाम्पत्य जीवन में व्यस्त हो गए।
1: अपने छोटे से घर के बाहर भी उन्होंने बहुत सारे पौधे लगाए। प्रतिदिन खदान में काम पर जाना और सुबह शाम खदान और घर के पौधों की देखभाल करना उनकी दिनचर्या थी।
0: इस काम में उन्हें अपने पति का भी भरपूर सहयोग मिला। उनका घर एक छोटी मोटी नर्सरी बन गया था जिसमें पौधों की बहुत सी किस्में थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, लेकिन बस एक कमी थी जो दोनों को बहुत खलती थी।
1: उनके कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो अक्सर बहुत दुखी रहते थे। गांव वालों के ताने और लोगों द्वारा तरह तरह की बातों को सुनकर वो बहुत आहत हो जाते। इस बारे में अक्सर पति पत्नी में बातें होती।
2: जी सुनिए, विवाह को इतने वर्ष बीत गए, अभी तक हमें संतान का सुख नहीं मिला है।
3: थिमक्का, तुम इन बातों को ज्यादा मत सोचो। देखो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। सिर्फ उसकी कृपा हो जाए तो ये सुख भी हमें मिल जाएगा।
2: लेकिन कब तक हम ऐसे ही रहेंगे?
3: हाँ,
2: मुझसे गांव वालों के ताने नहीं सुने जाते।
3: कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा।
2: लोग कहते हैं मैं मनहूस हूँ।
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
2: किसी को खुशी नहीं दे सकी। मुझे लगता है हम मेरे जीवन का।
3: अरे नहीं नहीं नहीं थिमक्का, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं कहते। अरे ऐसे तो कोई बात नहीं है, लोगों का तो काम ही है कहना। कहने दो उन्हें, सब ठीक हो जाएगा थिमक्का, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, क्यों ना एक काम करें, हम थोड़ी देर के लिए बगीचे में चलें। चलो आओ, उठो उठो, शाबाश। हाँ, उठो, आजा, आओ। हाँ, देखो कितने सारे पौधे लगे हैं यहाँ, ये तुमने तो लगाए हैं अपने हाथों से। देखो, क्या तुम्हें नहीं लगता थिमक्का कि तुम्हें देखकर ये कितने ज्यादा खुश हो रहे हैं?
2: क्यों खुश नहीं होंगे, ये तो मेरे बच्चे के समान है।
3: अरे बच्चे के समान नहीं, ये तुम्हारे बच्चे हैं थिमक्का, तुम्हारे बच्चे।
2: हाँ।
3: संतान ना होने के कारण दुखी होकर रोते रहने से तो अच्छा है कि क्यों ना हम अपना पूरा प्यार इन्हीं बच्चों पर उड़ेल दें।
2: शायद आप ठीक कहते हैं। ये हमारे बच्चे ही है।
3: हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। ये हुई ना बात।
0: फिर क्या था, अब उन्हें खुशी से जीने की मानो एक मंजिल मिल गई थी, एक लक्ष्य मिल गया था। इस घटना के बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनके गांव के सामने से होलिकल और कुदुर का राजमार्ग जाता था।
1: उन्होंने देखा कि राजमार्ग पर पेड़ बहुत कम थे। थिमक्का अक्सर सोचती,
2: सुनिए, देखो कितना अच्छा होता यदि सड़क के किनारे किनारे बहुत से पेड़ होते।
3: हाँ, ये तो है।
2: राहगीरों को सस्ताने के लिए ठंडी छांव तो मिलती।
3: सही कहा।
2: और हाँ, पक्षियों को भी बसेरा मिल जाता।
3: बिल्कुल,
2: उन्हें खाने के लिए फल मिल जाते। तो ऐसा ही क्यों ना करें।
3: बिल्कुल सही सुझाव है तुम्हारा। हाँ। हम लोग ऐसे ही करते हैं।
2: ठीक है,
3: इसके दोनों तरफ पेड़ लगाते हैं। हाँ। ठीक है ना?
2: बिल्कुल ठीक है।
0: पति पत्नी ने निर्णय किया कि शुरुआत में वो सिर्फ 4 किलोमीटर की दूरी तक पेड़ लगाएंगे। उन्होंने सड़क के दोनों

0: और बरगद के 20 पौधे लगाए।
1: कोई भी सोच सकता है कि पौधे लगाना भला कौन सी बड़ी बात है, मिट्टी खोदी और पौधा लगा दिया। लेकिन साथियों, किसी को वास्तविकता का पता तभी चलेगा जब वो स्वयं न सिर्फ पौधे लगाएंगे बल्कि उनकी पेड़ बनने तक रक्षा करेंगे।
0: काम आसान नहीं था, उन्हें बरगद के इन पौधों की रक्षा करनी थी। कर्नाटक का ये क्षेत्र शुष्क है, इसलिए पौधों को पानी भी देना था और उन्हें जानवरों से भी बचाना था।
1: वो दोनों सुबह शाम और छुट्टियों के दिन सड़क पर बाल्टी लेकर आते जाते हुए दिखते। उपहास करने वालों को क्या पता था कि पौधों से उनका रिश्ता साधारण नहीं बल्कि माता पिता और बच्चों का है।
2: जी सुनिए।
3: हाँ।
2: ये बाल्टी इधर लेकर आइए।
3: ये लो थिमक्का, ये भी ले लो, इसे भी भर दो।
2: हाँ।
3: मैं यहाँ डालता हूँ पानी।
2: अरे इसे, इसको भी डालो।
3: हाँ, ये देखो देखो देखो कितना छोटा था ना ये पौधा, कितना छोटा था, देखो अब कितना बड़ा हो गया है ना।
2: प्यारा लग रहा है, मेरा छोटा सा बच्चा।
0: लोगों की बातों की परवाह ना करते हुए उन्होंने कभी अपने उस संकल्प को हारने नहीं दिया। लेकिन हाँ, उन्होंने धीरे धीरे ये महसूस किया कि मानसून के समय यदि वो पौधों को लगाएं तो पौधों को पर्याप्त मात्रा में जल मिलेगा और वो अच्छी तरह से बढ़ेंगे भी।
1: बात निकली तो दूर तक पहुंचती चली गई। उन्होंने अपना पूरा स्नेह पौधों पर उंडेल दिया और हर साल पेड़ों की गिनती बढ़ती चली गई। धीरे धीरे लोगों ने भी साथ देना शुरू किया। सड़क के दोनों ओर धीरे धीरे बरगद के पौधे पनपने लगे और बढ़ते चले गए।
3: देखा थे मक्का, तुम्हारी मेहनत रंग लेकर आ गई है। कितने अच्छे लग रहे हैं ना पौधे।
2: हाँ।
3: और कितने बड़े भी लग रहे हैं।
2: अरे ये तो देखो कितना बड़ा हो गया। सोचा भी नहीं था इतनी जल्दी बड़े हो जाएंगे।
3: ये सब तुम्हारी मेहनत का नतीजा है।
4: अरे देखो तो कैसी हरियाली हो गई।
5: हमारा शहर हो
0: लेकिन इसी बीच एक दुखद घटना घटी। श्रीमती थिमक्का के पति का निधन हो गया। उन्होंने पति के साथ पेड़ लगाने के जिस काम को शुरू किया था उस काम को जारी रखा। 1940 के दशक से वो आज तक पेड़ लगा रही हैं। थिमक्का होलिकल और कुदुर के बीच स्थित 45 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर लगभग 400 पेड़ लगाने के लिए विख्यात हैं। साथियों, सालू मर्दा थिमक्का की यात्रा यहीं समाप्त नहीं होती है। उन्हें पर्यावरणविदों ने वृक्ष अम्मा की संज्ञा दी है। उन्होंने अपने क्षेत्र में जैव विविधता वाले कुल 8000 से भी अधिक पेड़ लगाए हैं, जिससे स्थानीय पर्यावरण को बहुत लाभ पहुंचा है। उन्हें 8000 पेड़ों की माता की उपाधि भी दी गई है।
1: उनके क्षेत्र में मौसम पहले बहुत शुष्क हुआ करता था लेकिन अब उसमें नमी बढ़ी है और वर्षा भी पहले से अधिक होने लगी है। पर्यावरण के प्रति उनकी इस विलक्षण सेवा को देखते हुए सन 2019 में भारत सरकार ने उन्हें देश के द्वितीय नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया।
6: सालू मर्दा थिमक्का, समाज सेवा।
0: 113 वर्ष की सालू मर्दा थिमक्का का कहना है,
7: किसी पौधे को देखिए तो उसे धन्यवाद दीजिए क्योंकि वो आपके जीवन को खुशहाल और बेहतर बना सकता है। पेड़ हमारी जीवन रेखा है, जीवन रेखा, समझे? हाँ।
0: सालू मर्दा थिमक्का, वृक्ष अम्मा और 8000 पेड़ों की माता, आपको हमारा आभार। अपने वात्सल्य और ममता को आपने पेड़ पौधों में उंडेल

कर और उन्हें अपनी संतान बनाकर मातृत्व का एक ऐसा नूतन अनुकरणीय और अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है जिसे

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम वृक्षों की माता सालू मर्दा थिमक्का। CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है पर्यावरण गीत वन में मेरा मन है।
1: आह, पेड़ों की हरियाली, ठंडी ताजी हवा एक नई ऊर्जा का एहसास दिलाती है। सच में वन एक बहुत उपयोगी प्राकृतिक संपदा है, फिर भी पता नहीं क्यों हम अपनी जरूरतों को पूरा करते करते ये भूल जाते हैं कि इनकी देखभाल और सुरक्षा हमारी ही जिम्मेदारी है। अरे, ये आवाज कैसे सुनाई दे रही है इधर से? लगता है कोई गा रहा है। जरा सुना जाए।

0: देखो वनों के होते हैं कितने प्रकार, कुछ वन पर्वतीय, कुछ पतझड़ीय, तो कुछ सदाबहार।
1: कहीं तेंदू तो कहीं महुआ, कहीं साल तो कहीं पलाश, बचाएं इनको हमें कहीं करनी न पड़े फिर तलाश।

0: अरे वाह, कितना सुंदर संदेश था। सच ही तो कहा है, वन से ही जीवन है। वन है तभी तो हम हैं। तो क्यों ना हम सभी अपनी रोजमर्रा की छोटी छोटी गतिविधियों में सावधानी बरतकर अपने हिस्से की जिम्मेदारी पूरी करें और वनों के संरक्षण में अपना योगदान दें। जैसे वनों से मिलने वाली चीजों, कागज, लकड़ी का समुचित उपयोग, पेड़ों की कटाई को रोकना, नए पेड़ लगाना और भी बहुत कुछ। आप भी सोचिए और अपनी भागीदारी सुनिश्चित कीजिए।
1: वन में मेरा मन है। अभी आप सुन रहे थे ये पर्यावरण गीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, अकादमिक समन्वय प्रोफेसर रुचि वर्मा, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, आलेख अंजलि, ध्वन्यांकन विकास सांगवान, गायन स्वर पुन्यांशी और अनुष्का, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, परामर्श अजीत होरो, निर्देशन तथा निर्माण विमलेश चौधरी। प्रिय श्रोता, यदि आप हमारे कार्यक्रमों पर प्रतिक्रियाएं देना चाहते हैं तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800 44 05 59।

0: तो हमारे टोल फ्री IVRS नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री IVRS नंबर है 8800440559। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अब हमें आज के कार्यक्रम को विराम देने की आज्ञा दीजिए। तो अब अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार, नमस्कार।

0: ଶୁଣିଲେ NCERT ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ।
1: यहाँ खबरें तोड़ी मरोड़ी नहीं जाती।
2: बहुत सारे निजी चैनल और निजी चैनलों के बोलबाला में हम समझ रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन इसकी रिलेवेंसी क्या है।
1: यहाँ होती है सीधी, सटीक और सच्ची खबरें।
2: मैं मन से मानता हूँ कि भारत के भाव की अभिव्यक्ति केवल और केवल आकाशवाणी और दूरदर्शन ही कर रहे हैं,
1: क्योंकि ये है देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल। DD News, केवल खबर, पूरी खबर।

0: আজকে শ্রেণী ভবানী পাটনা প্রথমে হিন্দি পরে পরে ইংরাজি সম্বাদ শুণত রিলে করে প্রচার করছু আকাশবাণী দিল্লি রু।
1: নমস্কার, আকাশবাণী সমাচার কে সাথ মে লভলিন নিগম। भारत और साइप्रस ने आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में आज कई समझौते किए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइडस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग दोगुना हो गया है।
2: साइप्रस भारत के टॉप 10 इन्वेस्टर्स में से एक है। पिछले एक दशक में साइप्रस से भारत में निवेश लगभग डबल हुआ है। दोनों देशों के बीच ट्रस्ट बढ़ा है। भारत यूरोपियन यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से तमाम नई संभावनाएं बनी हैं। इसका लाभ उठाते हुए हम अगले 5 वर्षों में इस इन्वेस्टमेंट को फिर से डबल करने का लक्ष्य रख रहे हैं।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि दोनों नेताओं ने व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, मोबिलिटी, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत और यूरोपीय संघ के बीच संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने बताया कि साइप्रस ने मुंबई में व्यापार कार्यालय खोलने की घोषणा की है। साइप्रस आतंकवाद के खिलाफ संघर्ष में हमेशा भारत के साथ रहा है। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार देश की सीमाओं को और अधिक अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में श्री शाह ने कहा कि इस परियोजना में ड्रोन, रडार, कैमरे और अन्य तकनीकी संसाधन शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार घुसपैठ पर रोक लगाकर प्रत्येक घुसपैठिए को देश से बाहर करेगी। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला में वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था। ऐसे में प्रशासन देर भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी।

0: पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया है। ये पोस्टमार्टम एम्स नई दिल्ली के डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग ने राज्य सरकार के मुख्य सचिव और डीजीपी से 7 दिन के भीतर विस्तृत कार्यवाही रिपोर्ट मांगी है। सर्वोच्च न्यायालय 1 जुलाई से 9वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन अनिवार्य करने के CBSE के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के हाल के परिपत्र के अनुसार 3 भाषाओं में कम से कम 2 भारतीय मूल की भाषाएं होनी चाहिए। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि 1 दिन और बढ़ाकर 24 मई कर दी है। ये निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। बोर्ड ने बताया कि विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ये मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। IPL क्रिकेट में आज शाम 7:30 बजे हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। दोनों टीमें पहले ही प्लेऑफ में प्रवेश कर चुकी हैं। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा और चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले 2 दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश में रात का मौसम गर्म रहने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: This is Akashvani. The news read by Anuja Kumar. India and Cyprus exchanged several agreements in different areas, including establishing a joint working group on counter-terrorism, innovation and technology, higher education and research and cultural cooperation in New Delhi today. Prime Minister Narendra Modi held discussion with President of Cyprus, Nikos Christodoulidis, on strengthening bilateral cooperation across a wide spectrum of areas. They also exchanged views on issues of regional and global importance, including cooperation in multilateral fora. Prime Minister Modi said during the meeting they also discussed global issues.
2: Bharat aur Cyprus ke beech ye strategic partnership dono deshon ke financial aur services hub ko jodkar commerce ke liye capital unlock karegi. Ye Cyprus ke infrastructure, energy aur agriculture sector mein भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: President of Cyprus Nikos Christodoulidis said the bilateral relations between the two nations and the European Union-India relations have made leaps of progress over the last year. The President of Cyprus is on a 4-day visit to India. He will meet President Draupadi Murmu at Rashtrapati Bhavan this evening. The Election Commission today announced the schedule for the biennial election to 24 seats of the Rajya Sabha from 10 states. 4 seats each in Andhra Pradesh, Gujarat and Karnataka, 3 seats each in Rajasthan and Madhya Pradesh, 2 seats in Jharkhand and 1 seat each in Manipur, Meghalaya, Arunachal Pradesh and Mizoram will fall vacant. According to the Commission, the notification will be issued on the 1st of next month and the polling will be held on the 18th of June. The counting of votes will take place on the same day. The Commission also announced the Rajya Sabha bipoll for 1 seat each in Maharashtra and Tamil Nadu. The bipoll will also be held on the 18th of next month. Prime Minister Narendra Modi will distribute more than 51,000 appointment letters to newly appointed youth in various government departments and organizations at the 19th Rozgar Mela tomorrow morning through video conferencing. Mr. Modi will also address the gathering on the occasion. The 19th Rozgar Mela will be held at 47.

0: Good evening and welcome to Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. I am Anubha Rohatgi with my co-anchor Prachi Priya.
1: नमस्कार. मार्केट मंत्र का समस्त परिवार आपका अभिनंदन करता है. श्रोताओं, आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार

0: ଆକାଶବାଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ସବୁବେଳେ।
1: खरा दिने अंशुघात प्रति सतर्क रुहन्तु।
2: अंशुघातर लक्षण गुड़िक हेउछि प्रबल झाड़ बोहिबा, मुंड बुलाई अंधार दिसिबा ओ बांती लागिबा, प्रबल शोष लागिबा, मांसपेशी टाणी

0: अचेत हेबा किंबा बात मारिबा
1: अंशुघात निमन्ते पूर्व सतर्कता गुडी कहेउछि सकाळी किंबा उपर बेळा खरा कम थिबा बेळे बाहर को जांतु बाहर को जिबा पूर्वरु जथेष्ट पानी पियंतु हालुका रंगर ढिला पोशाक छत्ता ओ जत्ता व्यवहार करंतु खरारे कठिन परिश्रम करंतु नाही अधिक दूर चालंतु नाही मझिरे मझिरे छाईरे विश्राम नियंतु
0: अंशुघातर प्रतिकार गुडी कहेउछि रोगी को खोला ओ ठंडा जगा को नी ओआरएस किंबा चीनी लुणा शरबत अथवा साधा पानी पियंतु पोशाक गुड़ी को जथा संभव खोली दियंतु मुंड को धोई दियंतु एवं ओदा कपड़ा रे पोछंतु रोगी को पंखा कूलर किंबा एसी पवन रे सुवाई दियंतु अवस्था रे उन्नति न हेले स्वास्थ्य कर्मचारी को जणंतु किंबा एम्बुलेंस डाकंतु
1: वयस्क तथा असुस्थ व्यक्ति एवं गर्भवती महिलां को पाई अंशुघातर आशंका अधिक रही थाए
0: स्वास्थ्य ओ परिवार कल्याण विभाग ओडिसा
2: मोर जणे जिदिया पड़ोसी अछि पूरा कॉलोनी सोलर पैनल लगाई सालेनी किंतु से मानिबा को प्रस्तुत नथिले सतरे बिजुली बिल जीरो आसी पारे मु कहली पुओ ना हेउछि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना तापरे जण जण करी समस्तंकर बिजुली बिल जीरो आसीबा कु लागिला तापरे कहिले एबे लगेबा कु ही पड़िबो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजुली योजना जोड़ी हेबा पाई पंजीकृत करंतु pmsuryaghar.gov.in

आकाशवाणी संबलपुर आंचलिक खबर पढ़ुचन अतीश कुमार शतपथी जुहार पहला मुख्य खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवाकेल रोजगार मेलाती बांटिबे 51,000 नवत्का नियुक्ति पत्र रथयात्रा के श्रृंखलित भावे करबार लागि आईन मंत्री अध्यक्षताति हेला समीक्षा बैठक खाद्य सुरक्षा क्षेत्रती गोटे वैप्लविक पदक्षेप भावे झारसुगुड़ान लोकार्पित हेला अन्नपूर्ति ग्रैंड एटीएम आउर ओडिशा आउ तार पाखर इलाका उपरे सक्रिय रहिछि गोटे घूर्णी बलय एथरा पूरा खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आवाकेल आभासी जरिए 19 नंबर रोजगार मेलाथी केन्द्र सरकार भिन्न भिन्न विभाग आउ संस्थान नुआकर नियुक्ति पाई 51,000 नौतका जवान पिला टुकेल को नियुक्ति पत्र बांटिबे इ अवसर प्रधानमंत्री उपस्थित थिबार नियुक्ति पाई पिला टुकेल को भिल संबोधन करबे देशर 47 जगह नई रोजगार मेला आयोजन कराउथवार बेले संबलपुर गंगाधर मेहर विश्वविद्यालय प्रेक्षाळयन रोजगार मेला आयोजन कराउछि इन जन दीजिएपर जे एबतक देशे आयोजित होतीबार 18 रोजगार मेला जरिया पखापाखी 12,00,000 निजुक्ति पत्र बंटा जा सरी भुवनेश्वर लोकसभा भवन

0: मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को भारतीय शिल्प महासंघ सीआईआई ओडिशा चैप्टर अध्यक्ष अनिल सिंह आ उपाध्यक्ष मणिकांत नायक सौजन्यमूलक साक्षात करिछन एबा सीआईआई पूर्वांचल परिषद सम्मेलन आयोजन के नेकरि बैठक ती आलोचना हेछे सम्मेलन ती ओडिशा सहित बिहार पश्चिमबंग छत्तीसगढ़ आ झारखंड रो प्रतिनिधि माने जोग देबे प्रधानमंत्री कर पूर्वोदय परिकल्पना थी ई राज्य मानकर समन्वित भूमिका ओडिशा अभिवृद्धि आउ भविष्य योजना के नेकरि मुख्यमंत्री निजर दृष्टिकोण उपस्थापन करबे देशे मातृभाषा आधारित शिक्षार आवश्यकता रहिछे बोली केन्द्र शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान कहिछन नुआ दिल्ली ने गोटे सम्मेलन थी जोग देकरी श्री प्रधान कहिछन आज आवश्यकता के नजरटी रखिकरी नूतन जातीय शिक्षानीतिर परिकल्पना करा जाइछे इथि नवसृजन प्रयुक्ति विद्या अनुसंधान के जोर दिया जाइछे 2047 मसीहा तक विकसित भारत गठन करबार के हेले दासत्वर मानसिकता त्याग करबार के पड़वा बोली श्री प्रधान कहिछन पुरीन महाप्रभु श्री जगन्नाथ रथयात्रा के नेकरी राज्य अतिथि भवन आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन अध्यक्षता गोटे समीक्षा बैठक हो स्नानयात्रा नु नीलाद्री विजेतक सब उत्सव के श्रृंखलित भाव आयोजन करबार उपरे मंत्री जोर दे
1: प्रतिवर्ष गोटे आलोचना एभलिया भावरे हुए समस्ते समस्तंकर विभिन्न प्रकार जो मत देइछंती कौन कले ठाकुरंकर रथयात्रा एवं विभिन्न स्नान यात्रा तो आरंभ करिकी पूरा नीलाद्री विजय पर्यंत समस्त काम सुरुखुरुरे हबो भलरे हबो एवं जो भक्त माने लक्ष लक्ष संख्यारे आसुछंती दर्शन करिवाकु से समय भितरे सेमानंक पई भी सुगम हबो दर्शन ये सब कथा को आधार करिकी अनेक गुड़ी आलोचना चर्चा होती एवं तारी आधार रे विभिन्न वरिष्ठ दैतापति माने जो सब परामर्श देइछंती से परामर्श को आधार करिकी आम माने से अनुजाई जो कार्यक्रम हबो ताकु निष्पत्ति नउछु एवं निर्घंट से अनुसार स्थिर होछु
0: बैठक थी श्रीमंदिर प्रशासन पुरी जिला प्रशासन पुलिस आउ दैतापति नियोग प्रतिनिधि माने उपस्थित थिले पहंडी रथघीचा भीड़ नियंत्रण सुरक्षा भक्तमंक सुविधा आउ नीति निर्घटन के नेकरि आक्तुरा सूचना बाबदे बैठक थी आलोचना हेछे निर्वाचन आयोग 10 राज्य 24 राज्यसभा आसन लगी निर्वाचन सूची घोषणा करिछन आंध्रप्रदेश गुजरात कर्णाटक 4 लेखे आसन लगी निर्वाचन हबार के थिवार बेले राजस्थान और मध्यप्रदेश 3 लेखा झारखंड 2 मणिपुर मेघालय अरुणाचल प्रदेश और मिजोराम 1 लेखा आसन लगी निर्वाचन हबा एबा मास 1 तारीख निर्वाचन लगी विज्ञप्ति जारी करा जिबा आउ जून 18 तारीख दरकार हेले भोट ग्रहण करा जिबा सेई दिन भोट कंतिभिल करा जिबा ओडिशा जैव विविधता बोर्ड तरफ भुवनेश्वर लोकसभा भवन स्टेट कन्वोकेशन सेंटर राज्यस्तरीय अंतर्जातीय जैव विविधता दिवस पालित हो जाए स्थानीय पदक्षेपर विश्वस्तरीय प्रभाव विषयवस्तु के नेकर यह दिवस पालन कार्यक्रम टी जंगल और परिवेश मंत्री गणेश राम सिंह खुंटिया मुख्य अतिथि भाव जोग देकर कहीछन जैव विविधता क्षेत्र टी ओडिशा देशर गोटे आगधाड़ी राज्य भाव परिचित हो कार्यक्रम थी जैव विविधता संरक्षण थी उल्लेखनीय अवदान लगी 8 को जैव विविधतार रक्षक आउ 2 को जैव विविधतार विजेता सम्मान थी सम्मानित करा जाए छे ये अवसर 4 प्रमुख पुस्तक आउ रिपोर्ट भी उन्मोचन करा जाए छे आपण माने खबर सुनुछन आकाशवाणी संबलपुर केन्द्र नो खाद्य सुरक्षा क्षेत्र ती गोटे वैप्लविक पदक्षेप भावे ओडिशा सरकार आउ जातिसंघर विश्व खाद्य कार्यक्रम रो मिलित सहयोग थी झारसुगुड़ान एच अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम लोकार्पित इटा ओडिशार 2 आउ देशर 3 ग्रेन एटीएम है राजस्व विपर्य परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी खाद्य जोगाण आउ खाउटी कल्याण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र आउ झारसुगुड़ा विधायक टंकधर त्रिपाठी उपस्थित रहीकरी ताके उद्घाटन करिछन ये अत्याधुनिक व्यवस्था जरिए हिताधिकारी माने बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण उतरु खाली 40 सेकेंड थी 25 केजी तक खाद्य शस्य पाइपारे राज्य फी जिला और ब्लक स्तर नई सेवा उपलब्ध करबार योजना रही है आउ एबा दिने राइजे आउ 5 ग्रेन एटीएम स्थापना करा जोगाण मंत्री श्री पात्र कहिछन राजस्व विपर्य परिचालना मंत्री सुरेश पुजारी झारसुगुड़ा एच कटापाले नथिबार हॉकी स्टेडियम एच परिदर्शन करिछन स्टेडियम न चलितबार टर्प तयारी काम रो अग्रगति बाबदे भिल समीक्षा करथिले स्टेडियम न खिलाड़ी मानकर लगी सुविधा सुजोग बढ़ावार लगी अधिकारी मानकर संगे आलोचना करिछन अंतरराज्य स्कूल हॉकी प्रतियोगिता थी ओडिशा तरफ खेलितबार 14 बछर बर्गर साहित नायक आउ 16 बछर बर्गर विवेक नायक को मंत्री अभिनंदन जनाबार सहित राज्य और देश लगी खेलिकुरी जिला ना रखबार के उत्साहित करिछन समलपुरन डालुआ धानगिना के नेकरी खाद्य जोगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्रंकर अध्यक्षता समीक्षा बैठक हो जिला न एत

0: तक 1,00,000 क्विंटल धान किना जाई छे एवा दिने बिल धारी समय भितरे चासी मान कनु धान किना जीवा बोली मंत्री कोइछन इतर सहित मुख्यमंत्री कनु खास निर्देश अना जाई करी तोलिया जमीन ते चास होतबार धान के बिल घिना जीवा बोली मंत्री श्री पात्र कोइछन
1: माननीय मुख्यमंत्री कोइछन जे संबलपुर गोटे गुरुत्वपूर्ण स्थान होइतबा कारणरो तारो जो दायित्व बहुत अधिक अछि तनु समस्त सहित आलोचना विलोचना करके ता करा निश्चित भाव आगामी दिन में आम ये अंचल विकास कर
0: ओडिशा माध्यमिक शिक्षा परिषद परिचालित शिक्षक योग्यता परीक्षा ओटीईटी जून 21 तारीख बदले 28 तारीख दिन हेबा बोली परिषद तरफ सूचना दिया जाइछे ओटीईटी रो पहला विषय सकल 9:30 बजे तक आ दुई नंबर विषय लागी ऊपर बेला 2:30 बजे तक परीक्षा हेबा जून 17 तारीख नु परिषद रो वेबसाइट थी एडमिट कार्ड मिलबा बोली सूचना दिया जाइछे राज्य शारीरिक शिक्षा अधिकारी मानक नहींक्र द्विदिनिया दिग्दर्शन और समीक्षा बैठक हो जाए कार्यक्रम के माध्यमिक शिक्षा परिषद निर्देशक वीरेन्द्र करकरा उद्घाटन करवा सहित अधिकारी मानक दिग्दर्शन देछन कार्यक्रम ती 6 क्रीड़ा योगासन टाइकांडो सफ्टबल उसु साइक्लिंग और स्केटिंग खेल प्रशिक्षक मैंने जोग देकर शारीरिक शिक्षा अधिकारी मानक तालीम देते गला कैल होइतिबार एक दिग्दर्शन कार्यक्रम थी ओडिशार 30 जिलार शारीरिक शिक्षा अधिकारी मैंने जोग देते नुआपड़ा जिलापाल कार्यालय सम्मिलनी कक्षण लिंग चयन और भ्रूण हत्या रोकवार बाबदे गोटे समीक्षा बैठक जिलापाल मधुसूदन दास अध्यक्षता होती इ बाबदे रही सरकारी आईन दायित्व आउ जनसचेतनता बाबदे बैठक की आलोचना कर बरगढ़ जिला सहेला ब्लक सम्मिलनी कक्षण जनजाति गरिमा अभियान अधीन थी जिला स्तरीय जनभागीदारी सबसे दूर सबसे पहले कार्यक्रम मूल हो केन्द्र सरकार जनजाति व्यापार मंत्रालय और राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति विकास विभाग निर्देश थी गला 18 तारीख नु 25 तारीख तक धरती आवा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान अधीन थी चलवा जिलार 157 जनजाति बहुल गाँव रोथवार आदिवासी मानकर पासे सरकारी योजना मानकर सुविधा पहुंचाबाटा इतर लक्ष्य है राज्य अंशुघात लगी होथवार मृत्यु संख्या 3 थी पहुंचीचे बलांगीर सुंदरगढ़ और सुवर्णपुर जिला जनलेखा व्यक्ति जीवन जाइथिबार उपस्वतंत्र रिलीफ कमिश्नर पद्मनाभ बेहरा सूचना दैछन केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई युक्त दुई बोर्ड परीक्षार उत्तर खातर स्कैन फोटोकॉपी लगी शेष तारीख की आउ गोटे दिन बढ़े करी 24 तारीख तक करीछे आगन इतार शेष समय एवं काल तक थिला स्कैन कॉपी मिलवा ऋतु छात्र छात्री मैंने पुनः मूल्यांकन आउ वेरिफिकेशन लगी दुई दिन भितर आवेदन करिपारे बोर्ड तरफ कहुछे ओडिशा आउ तार पाखर इलाका उपरे गोटे घूर्णिबलय सक्रिय रही इतार प्रभाव थी केन्द्रीय बंगोपसागर न एवं हप्ता थी लघुचाप हेबार संभावना रही है भारतीय पाणीपाग विभाग तरफ अनुमान कर समय भितर राज्य केतरा इलाका न जबर वर्षा होगा अनुमान सियाड़े राज्य जबर ग्रीष्म प्रवाह जारी रही है एवं 24 घंटा भितर बरगढ़ सुवर्णपुर सुंदरगढ़ सहित 5 जिला के जबर ताती होगा भुवनेश्वर आंचलिक विज्ञान केन्द्र तरफ सूचना मिली झारसुगुड़ा जिला न आज राज्य सबुन जहताती 45.2 डिग्री सेल्सियस रेकर्ड करा जाई छे। सेसे मुख्य खबर फिर खाए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आबाकेल रोजगार मेला थी बांटिबे 51,000 नवात्का नियुक्ति पत्र रथयात्रा के श्रृंखलित भावे करवार लगी आईन मंत्री अध्यक्षता हेला समीक्षा बैठक खाद्य सुरक्षा क्षेत्र ती गोटे वैप्लविक पदक्षेप भाव झारसुगुड़ा न लोकार्पित है अन्नपूर्ति ग्रेन एटीएम आउर ओडिशा आउ तार पाखर इलाका उपरे सक्रिय रही छे गोटे घूर्णिबलय आज आंचलिक खबर शेष है जुहार।

आंखें, मैं लड़खड़ा के चल पड़ा के मुंतजर है मैं कदे। हम वो जमीन का टुकड़ा जिस पे खंदकें और सरहदें, अब दिल को बड़ी दिक्कतें, मुशक्कतों में दिन कटे। हम मुख्तलिफ भी हैं, कभी हम होते हू बहू, हम किस किस्म की जंग में और हम किसके रूबरू। दिल की बेदिली का क्या करूं बता भी दो, ये पर्दे अब हटा भी दो सब।

0: नमस्कार, मैं हूं शक्ति सिंह और स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। हम एक बार फिर मौजूद हैं नए क्लेवर, नए रंग और नए अंदाज के साथ, जहां हमारे साथ है हर मैच का ताजा अपडेट, हर मैदान का हाल और हर खिलाड़ी की खबर, और सब कुछ अधिक डिटेल के साथ। तो शुरू करते हैं खेल की हर बात स्पोर्ट्स कैन के साथ। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। कल गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स पर जीत दर्ज की। ईस्ट बंगाल ने 22 वर्षों बाद इंडियन सुपर लीग का खिताब जीता। 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता आज से रांची में शुरू हुई। और हॉकी इंडिया ने महिला अंडर 18 एशिया कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा की। स्वीटी कुजूर को सौंपी टीम की कमान। तो आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं आईपीएल के रोमांचक मुकाबलों के आसमान छूते रोमांच के साथ, जहां आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मैच खेला जा रहा है। टॉस जीतकर बल्लेबाजी करने उतरी हैदराबाद ने। इस समय ताज़ा समाचार मिलने तक 12वें ओवर में 2 विकेट खोकर 126 रन बना लिए थे। इस मैच से पहले कल अहमदाबाद में मेज़बान गुजरात टाइटंस ने चेन्नई सुपर किंग्स पर जीत दर्ज कर चेन्नई के प्लेऑफ में पहुंचने की संभावनाओं पर पानी फेर दिया। आइए सुनते हैं इस मैच का पूरा हाल।
1: अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में करो या मरो के मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। टॉस गंवाकर बल्लेबाजी के लिए उतरी गुजरात टाइटंस ने बेहद शानदार शुरुआत की। पहले विकेट के लिए कप्तान शुभमन गिल और साई सुदर्शन की सलामी जोड़ी ने 74 गेंद में 125 रन की ताबड़तोड़ साझेदारी की। गिल ने 37 गेंद में 3 छक्कों और 7 चौकों के साथ 64 रन की पारी खेली। गिल के आउट होने के बाद साई सुदर्शन ने जॉश बटलर के साथ पारी को संभाला। दूसरे विकेट के लिए दोनों बल्लेबाजों ने 36 गेंद में 82 रन जुटाकर टीम को 207 के स्कोर तक पहुंचाया। 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर सुदर्शन आउट हुए, जिन्होंने 53 गेंद में 4 छक्कों और 7 चौकों के साथ 84 रन की सधी हुई पारी खेली। जॉश बटलर ने भी आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए 4 छक्कों और 5 चौकों की मदद से नाबाद 57 रन बनाकर टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। टॉप ऑर्डर बल्लेबाजों के आक्रामक प्रदर्शन की बदौलत गुजरात टाइटंस ने 4 विकेट खोकर 229 रन बनाए। विपक्षी खेमे से मुकेश चौधरी, स्पेंसर जॉनसन और अंशुल कंबोज ने एक एक विकेट अपने नाम किए। विशाल लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत बेहद निराशाजनक रही। इनफॉर्म बल्लेबाज संजू सैमसन पहले ही गेंद पर मोहम्मद सिराज का शिकार बने। इसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मैथ्यू शॉर्ट के साथ दूसरे विकेट के लिए 13 गेंद में 29 रन की साझेदारी करते हुए टीम को संभालने की कोशिश की, लेकिन कप्तान के आउट होने के बाद टीम बिखर गई। ऋतुराज ने 16 जबकि शॉर्ट ने 24 रन की पारी खेली। कार्तिक शर्मा भी महज 19 रन ही बना सके। टीम ने 63 के स्कोर तक अपने 5 विकेट खो दिए थे। शिवम दुबे ने डेवाल्ड ब्रेविश के साथ 21 गेंदों में 53 रन की साझेदारी की, लेकिन टीम को जीत नहीं दिला सके। दुबे 17 गेंद में 4 छक्कों और इतने ही चौकों के साथ 47 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद चेन्नई का कोई भी बल्लेबाज गुजरात की धारदार गेंदबाजी का सामना नहीं कर सका और पूरी टीम 13 ओवर 4 गेंद में 140 रन पर सिमट गई। गुजरात की ओर से मोहम्मद सिराज, कगिसो रबाडा और राशिद खान ने 3-3 विकेट हासिल किए। मोहम्मद सिराज को धारदार गेंदबाजी प्रदर्शन के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही गुजरात ने शीर्ष दो में फिनिश करने की अपनी दावेदारी मजबूत कर ली है। वहीं इस हार के साथ चेन्नई सुपर किंग्स प्रतियोगिता से बाहर हो गई है। प्रशांत कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
0: तो आईपीएल में हर जीत और हर हार इस प्रतियोगिता को रोमांच के शिखर पर ले जाती हुई। और अब अहमदाबाद के बाद रुख करते हैं झारखंड की रांची का, जहां पर बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम इस समय अपने ट्रैक और फील्ड इवेंट्स के साथ सज चुका है 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता के लिए, जिसकी आज शुरुआत हुई। आइए जानते हैं हमारे संवाददाता से आज प्रतियोगिता के पहले दिन खिलाड़ियों का कैसा प्रदर्शन देखने को मिला।
2: रांची के बिरसा मुंडा एथलेटिक्स स्टेडियम में आज से 29वीं राष्ट्रीय सीनियर एथलेटिक्स फेडरेशन प्रतियोगिता का भव्य आगाज हुआ। प्रतियोगिता के पहले दिन पुरुष 10,000 मीटर दौड़ में उत्तराखंड के दीपक भट्ट ने स्वर्ण पदक जीता।

0: कि महिला वर्ग में महाराष्ट्र की रवीना गायकवाड़ ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। प्रतियोगिता में कॉमनवेल्थ गेम्स क्वालिफिकेशन को लेकर खिलाड़ियों के बीच कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। चार दिनों तक चलने वाली इस राष्ट्रीय प्रतियोगिता में 62 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी, 27 ओलंपियन और कई एशियन एवं वर्ल्ड चैंपियनशिप पदक विजेता हिस्सा ले रहे हैं, जिससे रांची में खेल प्रेमियों के बीच उत्साह का माहौल है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं महविश रहमान।
1: आज के दिन खेली गई प्रतियोगिताओं की स्पर्धाओं के रिजल्ट महविश ने बताया और अब महविश हमारे साथ लाइव जुड़ चुकी हैं। महविश, हम ये भी जानना चाहेंगे, आपने रिजल्ट्स का तो जिक्र किया ही किया, बड़ी प्रतियोगिता है, कॉमनवेल्थ के टिकट यहाँ से मिलेंगे खिलाड़ियों को, कौन कौन से दिग्गज खिलाड़ी और सितारे हैं जो इस बार प्रतियोगिता में मेडल्स के लिए दौड़ लगाते हुए नजर आएंगे?
2: जी हाँ, यहाँ बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय और बहुत बढ़िया खिलाड़ी शीर्ष एथलेटिक ट्रैक और फील्ड इवेंट्स में हिस्सा लेने पहुंचे हैं। इनमें है भारतीय स्प्रिंट स्टार अनिमेश कुजूर हैं, अनुरानी हैं, तेजस शिरसे हैं, श्री शंकर एम हैं और सचिन यादव हैं, शैले सिंह, प्रवीण चित्रवाल जैसे कई बड़े नाम यहाँ आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं।
1: जी महविश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने काफ़ी बड़े खिलाड़ियों के बारे में बताया जिन पे नजरें रहने वाली हैं आने वाले इन चार दिनों में, जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ेगी। और अब एथलेटिक्स के बाद रुख करते हैं फुटबॉल के मैदान का, जहां पर कल एक बार रोमांच और इतिहास का संगम देखने को मिला। ईस्ट बंगाल ने कल 22 वर्षों का लंबा इंतजार खत्म करते हुए इंडियन सुपर लीग ISL 2025-26 का खिताब अपने नाम कर लिया।
3: इंडियन फुटबॉल योर चैंपियंस दिस सीजन, East Bengal, unboxed, unlocked, unchained, like never before, Indian Super League winners for the first time.
1: एक रोमांचक फाइनल में ईस्ट बंगाल ने कोलकाता में इंटर काशी को 2-1 से हराकर 2004 के बाद इस वर्ष ये खिताब अपने नाम किया है। सुनते हैं जोश, जज्बे, रोमांच और भावुकता से भरे इस मैच की हर डिटेल।
4: कोलकाता के किशोर भारती क्रीड़ांगन में कल रात मैच की आखिरी सीटी बजने के साथ ही पूरा स्टेडियम रोमांच और भावुकता से भरे माहौल में बदल गया। खिलाड़ी जमीन पर बैठ गए, फैंस हैरानी में एक दूसरे से गले मिलने लगे और भरे हुए एरिना में ईस्ट बंगाल के नारे गूंजने लगे। मोहम्मद राशिद 72वें मिनट में अहम गोल करके हीरो बने। इससे पहले यूसुफ अज्जारी ने दूसरे हाफ की शुरुआत में गोल कर ईस्ट बंगाल की मैच में वापसी कराई और स्कोर 1-1 से बराबर किया। मैच का पहला गोल अल्फ्रेड प्लानास ने 14वें मिनट में दाग कर इंटरकाशी को 1-0 की बढ़त दिलाई थी। मैच का पहला गोल अल्फ्रेड प्लानास ने 14वें मिनट में दाग कर इंटर काशी को 1-0 की बढ़त दिलाई थी। इस जीत से ईस्ट बंगाल 13 मैचों में 26 पॉइंट्स के साथ ISL टेबल में टॉप पर रहा। मोहन बागान सुपर जायंट ने स्पोर्टिंग क्लब दिल्ली के खिलाफ अपना आखिरी मैच भी 2-1 के स्कोर से जीता और पॉइंट्स में बराबरी पर रहा, लेकिन ईस्ट बंगाल के 5 गोल के बेहतर अंतर ने आखिरकार क्लब का नेशनल लीग टाइटल का लंबा इंतजार खत्म कर दिया। अर्जुन शर्मा, स्पोर्ट्स कैन।
1: वाकई देखने लायक पल था, जब खिलाड़ी तो खिलाड़ी, फैंस भी जिस तरह भावुक नजर आए एक दूसरे से गले मिलते हुए और अपनी खुशी का इजहार करते हुए। हॉकी इंडिया ने महिला अंडर 18 एशिया कप के लिए 18 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। 29 मई से 6 जून तक जापान में होने वाली इस प्रतियोगिता में टीम की कप्तान स्वीटी कुजूर होंगी। आइए सुनते हैं किन किन खिलाड़ियों को इस टीम का हिस्सा बनाया गया।
5: भारतीय टीम भोपाल में नेशनल कैंप में कई हफ्तों की तैयारी के बाद टूर्नामेंट में उतर रही है, जहां रानी रामपाल की अगुवाई में टीम ने तालमेल, फिटनेस और तकनीक के सभी पहलुओं पर भरपूर काम किया है। अगर टीम की बात की जाए तो महक परिहार और खिली कुमारी को बतौर गोलकीपर के रूप में टीम में शामिल किया गया है, जबकि सुगन सांगा, नीलम टोपनो, रुबीना बक्सला, किरण एक्का और सुलोचनी डिफेंस का मोर्चा संभालते नजर आएंगी। मिडफील्डर के तौर पर श्रुति कुमारी, दिया, स्नेहा दावड़े, रश्मिन कौर, निम्मी गीताश्री और पुष्पा मांझी टीम का हिस्सा हैं। वहीं नौशीन नाज कप्तान स्वीटी कुजूर, प्रियंका मिंज, संदीपा कुमारी और नैन्सी सरोहा अटैक ऑर्डर की जिम्मेदारी संभालेंगी। भारत को प्रतियोगिता में पूल ए में कोरिया, मलेशिया और सिंगापुर के साथ रखा गया है। टीम अपने अभियान की शुरुआत 30 मई को मलेशिया के खिलाफ करेगी। प्राची प्रिया, स्पोर्ट्स कैन।
1: देखना होगा कि ये युवा टीम एक लंबे अभ्यास और कई मैचों में पसीना बहाने के बाद किस तरह इस प्रतियोगिता में अच्छा प्रदर्शन करते हुए नजर आएगी। 23 ग्रैंड स्लैम और 100 से अधिक खिताब जीतने वाले टेनिस की दुनिया के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का आज जन्मदिन है। 22 मई 1987 को जन्मे सर्बियन खिलाड़ी ने

0: टेनिस की दुनिया के हर एक बड़े खिताब को जीता है। उनके जन्मदिन पर उनके इस संदेश को जरूर सुनना चाहिए जो हर युवा खिलाड़ी को मैदान पर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का पाठ पढ़ाता है।
1: द मैसेज रियली फॉर एनी यंग टेनिस प्लेयर अराउंड द वर्ल्ड हु इज एंड ड्रीमिंग टू बी हियर वेयर स्टेफनस एंड आई एम, ड्रीम बिग, डेयर टू ड्रीम बिकॉज एवरीथिंग इज पॉसिबल, डोंट लेट एनीबॉडी टेक अवे द ड्रीम, डजंट मैटर Doesn't matter where you're coming from. I actually think that the more disadvantaged childhood you have, the more difficulties and more challenges you have, the stronger you become. And don't really let anybody take away that dream from you. Nurture it, water it like you water the flowers. Even if you find only one person in this world that will accept, embrace, and support your dreams, find that person and dream big because you can make it.
0: एक दिग्गज खिलाड़ी जिसने सपने देखे और टेनिस के कोर्ट पर हर सपने को पूरा होते हुए भी देखा, अपने जज्बे से, अपने हौसले से, अपनी मेहनत से। और अब कार्यक्रम में बात करते हैं अपने मजबूत हौसलों से चुनौती की हर ऊंचाई लांघने वाले प्रवीण कुमार की। विश्व के नंबर एक पैरा हाई जंपर प्रवीण कुमार ने 2024 पैरालंपिक्स खेलों में तमाम रिकॉर्ड ध्वस्त करते हुए स्वर्ण पदक अपने नाम किया था। प्रवीण को 25 मई 2026 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा प्रतिष्ठित नागरिक सम्मान पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। सुनते हैं उनके जीवन पर आधारित ये रिपोर्ट।
2: हिम्मत की ऊंची छलांग, प्रवीण कुमार, पद्मश्री 2026। 15 मीटर दूर दो पोल्स पर टिका 4 मीटर का क्रॉसबार। बरसों की मेहनत, सिर्फ एक मिनट और एक चांस, और पूरी दुनिया की आंखें सिर्फ आप पर। आसान नहीं है ना? प्रवीण कुमार का जन्म सन 2003 में उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में हुआ था। बचपन में वॉलीबॉल खेलते खेलते प्रवीण ने हाई जंप की ऊंची छलांग लगाकर हर मुश्किल को चुनौती देने की ठान ली। स्कूल में जब टीचर ने प्रवीण को चोट लगने के डर से हाई जंप में भाग लेने से मना किया तो वो 8 दिन तक टीचर से जिद करते रहे। टीचर को मानना पड़ा और 10 बजे के इवेंट में 8 बजे इनका नाम लिखा गया।
3: सबको लगा पैर में प्रॉब्लम है, मैं 2-3 फीट से ज्यादा क्या ही कूदूंगा।
2: प्रवीण ने उस कंपटीशन में गोल्ड जीता, वो भी एबल बॉडीड कैटेगरी में।
4: ये छोटा था तो उसको जैसे बाजार लेके गई तो उसको बाबा मिले तो बाबा ने पैर देखा, बोले कि बेटा ये तो तांबे के पैरों से है, बच्चा ये तो देश का नाम रोशन करेगा।
2: प्रवीण के हुनर को बेहतर दिशा और रफ्तार मिली जब इन्हें इनके कोच डॉक्टर सत्यपाल सिंह मिले।
5: हाई जंप करने के लिए इंसान की हाइट और लेग स्ट्रेंथ दोनों ही चाहिए, लेकिन प्रवीण के पास दोनों ही नहीं था। फर्स्ट डे जब मेरे पास प्रवीण आया तो वो उसने 1.80 मीटर बिना टेक्निक के क्लियर किया। उसी दिन मैंने सोच लिया था कि प्रवीण रिकॉर्ड बनाएगा भी और रिकॉर्ड तोड़ेगा भी।
2: अब लक्ष्य था इंडिया के लिए गोल्ड लाना, लेकिन 2019 प्रवीण के लिए सबसे मुश्किल रहा। एक तरफ उनकी इंजरीज उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी, वहीं दूसरी तरफ उनके गेम की कैटेगरी भी चेंज हो गई थी। प्रवीण 1 साल के लिए दिन रात बस मेहनत करते रहे, हार नहीं मानी।
3: मुझे बस एक चीज याद थी कि जिसका गोल्ड मेडल होता है उसकी कंट्री का नेशनल एंथम बजाया जाता है।
2: प्रवीण ने कई अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन किया और पेरिस पैरा ओलंपिक्स में नया रिकॉर्ड बनाकर स्वर्ण पदक भी जीता।
3: अब मैं आने वाले खिलाड़ियों को बताता हूँ कि हिम्मत और मेहनत से सब कुछ हो सकता है। मैं मेडल के लिए नहीं खेलता, खेलता हूँ क्योंकि मुझे इंडिया के लिए खेलना पसंद है।
2: प्रवीण कुमार, पद्मश्री 2026, कोटि-कोटि नमस्कार।
0: स्पोर्ट्सकैन भी नमस्कार करता है उन खिलाड़ियों को जो मेडल के लिए नहीं खेलते, जो खेलते हैं इस देश के लिए, इस देश के मान के लिए, उससे जुड़े गौरव के लिए। ऐसे ही एक खिलाड़ी और हजारों युवाओं की प्रेरणा प्रवीण कुमार। और अब एक बार चलते चलते रुक करते हैं राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम का, जहां आईपीएल का एक रोमांचक मुकाबला खेला जा रहा है और सनराइजर्स हैदराबाद जो टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी थी, 13 ओवर और 2 गेंदों में 2 विकेट खोकर के 162 रन बना चुकी है। और हेनरिक क्लासन इस समय 16 गेंदों पर 34 और ईशान किशन 26 गेंदों पर 38 रन बना करके अपनी पारी को गढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल स्पोर्ट्स कैन में इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी खेल जगत की तमाम खबरों के साथ, खेल के मैदान के तमाम अपडेट के साथ।

0: आप अपनी राय और अपने सुझाव स्पोर्ट्सकैन की ईमेल sportscan.air@gmail.com पर हमें भेज सकते हैं। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 1 का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी। और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और साइप्रस के राष्ट्रपति निकोलस क्रिस्टोडोलाइडिस के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर भी चर्चा हुई। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया गया है।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है।
2: आज हमने साइबर सिक्योरिटी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और काउंटर टेररिज्म सहयोग को भी और मजबूत करने का निर्णय लिया है। इतना ही नहीं, हम इंडो पैसिफिक ओशन इनिशिएटिव और इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे महत्वपूर्ण पहलों से कनेक्टिविटी सुनिश्चित करने के लिए भी साथ मिलकर काम करेंगे।
1: साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
3: Discussions focused on enhancing cooperation.
4: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
3: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
1: सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है।
5: आने वाले एक साल के अंदर ही स्मार्ट बॉर्डर कंसेप्ट के साथ सीमा सुरक्षा बल की सुरक्षा में सभी प्रकार की तकनीक को लैस कर एक अभेद बॉर्डर की हम सुरक्षा की ग्रिड बनाने का काम आगे बढ़ रहा है और बहुत कम समय में गृह मंत्रालय, ड्रोन, रडार, आधुनिक कैमराज और बाकी सारी तकनीक के साथ एक स्मार्ट बॉर्डर के प्रोजेक्ट को लेकर देश के सामने आएगा।
1: गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने न केवल घुसपैठ रोकने का संकल्प लिया है बल्कि हर एक घुसपैठी की पहचान कर देश

से बाहर करने का भी प्रण लिया है। गृहमंत्री ने कहा कि सरकार के सशक्त प्रयासों से नक्सलवाद की 5 दशक पुरानी समस्या का प्रभावी अंत हुआ है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

निशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.go.in पर।
2: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है। ये देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। अग्निवन कम दूरी की सतह से सतह तक मार करने वाली स्वदेशी स्तर पर विकसित बैलिस्टिक मिसाइल है। ये पारंपरिक और रणनीतिक पेलोड्स ले जाने में सक्षम है और त्वरित तैनाती के लिए इसे तैयार किया गया है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत के बढ़ते डेटा सेंटर क्षेत्र से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट ग्रिड, नवीकरणीय ऊर्जा एकीकरण और उन्नत डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में 1,00,000 इंजीनियरिंग नौकरियां सृजित हो सकती हैं। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि भारत डेटा अर्थव्यवस्था को एक रणनीतिक अवसर के रूप में देखता है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारत कौशल आधारित समग्र शिक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की दिशा में काम कर रहा है। श्री प्रधान ने नई दिल्ली में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत स्कूली शिक्षा में बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य, पोषण और खेल गतिविधियों पर व्यापक रूप से ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी प्राप्त करने की अंतिम तिथि एक दिन बढ़ाकर 24 मई कर दी है। यह निर्णय वेबसाइट पर अत्यधिक आवेदन और तकनीकी व्यवधान के बाद लिया गया है। विद्यार्थियों को उत्तर पुस्तिका की स्कैन कॉपी मिलने के बाद पुनर्मूल्यांकन का आवेदन करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने नीट UG परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में एक और प्रमुख आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी मनीषा संजय हवलदार नीट UG परीक्षा प्रक्रिया में शामिल थी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा विशेषज्ञ के रूप में नियुक्त की गई थी। अब तक मामले में 11 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल 19वें रोजगार मेले में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों और संगठनों में 51,000 से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: यह रोजगार मेला रोजगार सृजन के प्रति प्रधानमंत्री की प्रतिबद्धता को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्र निर्माण में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए उन्हें सार्थक अवसर प्रदान कर रहा है। देश भर में अब तक आयोजित 18 रोजगार मेलों के माध्यम से 12,00,000 नियुक्ति पत्र जारी किए जा चुके हैं। यह 19वां रोजगार मेला देश भर में 47 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI भोपाल में मॉडल ट्विशा शर्मा की संदिग्ध मौत की जांच करेगा। ट्विशा 12 मई को अपने घर में मृत पाई गई थी। पुलिस ने ट्विशा के पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह के खिलाफ दहेज मौत की धारा के अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस बीच उच्च न्यायालय ने ट्विशा शर्मा के शव का दोबारा पोस्टमार्टम कराने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के धार जिले में हिंदू समुदाय ने आज भोजशाला में पूजा अर्चना की। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने 15 मई को भोजशाला

हालांकि वो वाग्देवी मंदिर घोषित किया था और साथ ही यहां जुमे की नमाज पर प्रतिबंध भी लगा दिया था। फैसले के बाद यह पहला शुक्रवार था, ऐसे में प्रशासन दिन भर हाई अलर्ट पर रहा और माहौल पूरी तरह शांतिपूर्ण रहा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज़ ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। भारत ने अफगानिस्तान के बाल टीकाकरण कार्यक्रम को मजबूत करने के लिए बीसीजी, टेटनेस और डिप्थीरिया के टीकों की 20 टन आवश्यक सामग्री भेजी है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि अफगानिस्तान को और खेप भेजी जा रही है। भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में अफगानिस्तान के लोगों की निरंतर सहायता की प्रतिबद्धता व्यक्त की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस सहायता का उद्देश्य अफगानिस्तान में बाल स्वास्थ्य देखभाल सेवा को मजबूत करना और टीकाकरण का दायरा बढ़ाना है। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 26 मई को नई दिल्ली में होगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर के निमंत्रण पर ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा कि एक स्वतंत्र और खुले हिंद प्रशांत क्षेत्र के लिए क्वाड के दृष्टिकोण के अनुरूप क्वाड विदेश मंत्री प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विचार विमर्श करेंगे और क्वाड के अंतर्गत की गई पहलों की प्रगति की समीक्षा करेंगे। माउंट एवरेस्ट से उतरते समय दो भारतीय पर्वतारोहियों अरुण कुमार तिवारी और संदीप अरे की मृत्यु हो गई। दोनों पर्वतारोही दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर पर विजय प्राप्त करने के बाद नीचे उतरते समय बीमार हो गए थे और हर संभव प्रयास के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। इस सीजन में एवरेस्ट पर यह चौथी मौत है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और विदर्भ में कल तक भीषण लू का रेड अलर्ट जारी किया है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ में लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले दो दिन में बिहार, छत्तीसगढ़, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी लू चलने की आशंका है। बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए डॉक्टरों ने गर्भवती महिलाओं को अत्यधिक सतर्क रहने की सलाह दी है। एम्स नई दिल्ली के प्रसूति और स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर के अपर्णा शर्मा ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि गर्भवती महिलाओं को पर्याप्त मात्रा में पानी पीना चाहिए।
2: प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी हीमोडायनेमिक चेंजेस होते हैं जिससे उन पे इसका असर और भी ज़्यादा हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है कि डे टाइम पे घर के अंदर ही रहें और जब तक शाम को हीट कम ना हो जाए बाहर बहुत ज़्यादा नहीं जाने की कोशिश करें। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा हाइड्रेशन मेंटेन करें, मतलब पानी पिए और ना सिर्फ पानी बट उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स होने चाहिए। तो जैसे नींबू पानी, नमक डाल के पिए या ORS पिए। तो अगर आप हाइड्रेशन मेंटेन करके रखते हैं तो काफ़ी हद तक हम सेफ रह सकते हैं।
1: बम्बई शेयर बाजार का संवेदी सूचकांक आज 232 अंक बढ़कर 75,415 पर बंद हुआ। निफ्टी 65 अंक की बढ़त के साथ 23,719 पर दर्ज हुआ। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच मुकाबला जारी है। ताज़ा समाचार मिलने तक हैदराबाद ने 16वें ओवर में 2 विकेट पर 204 रन बना लिए हैं। हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया। देश में आज वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन मोबाइल एप्लीकेशन शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के लिए सहायता प्रणालियों को मजबूत करना है। जीवन ऐप सरकारी कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी, आपातकालीन सहायता और वरिष्ठ नागरिक आवास की जानकारी उपलब्ध कराता है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और साइप्रस आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत। द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी तक बढ़ाने का निर्णय। आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर। सरकार बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ सभी सीमाओं को अभेद्य बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू करेगी। भारत ने ओडिशा के चांदीपुर में कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया। भारत ने बाल टीकाकरण कार्यक्रम मजबूत करने के लिए अफगानिस्तान को 20 टन महत्वपूर्ण वैक्सीन सामग्री भेजी। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक मंगलवार को नई दिल्ली में होगी और आईपीएल क्रिकेट में सनराइजर्स हैदराबाद

0: अब हम पाइप से सस्ती गैस पर फोकस कर रहे हैं, सीएनजी आधारित व्यवस्था को प्रमोट कर रहे हैं। ऐसे तमाम प्रयासों के कारण भारत इस बहुत बड़े वैश्विक ऊर्जा संकट का सामना कर रहा है।
1: There was also the meeting of the foreign ministers from Russia and Iran. What was discussed and how is energy security being addressed at the political and diplomatic front?
2: On the political and diplomatic front, India is addressing energy-related matters in a very, very active manner. India is very proactive in this regard. Our Prime Minister has pushed for alternative fuels and energy self-reliance, which would be a critical strategy to shield economies like India's from geopolitical vulnerabilities like the Middle East conflicts and choke point disruptions. So by reducing massive import bills, this approach builds macroeconomic resilience, curbs carbon emissions, and ensures sustainable long-term national security in an increasingly volatile global energy landscape.
1: Speaking about alternative fuel and energy supplies, a coal gasification scheme has been announced to the tune of 37,000 crore rupees. It is a step in the right direction. How is this actually going to benefit consumers in the country? Because they would be the hardest hit by what's happening with the West Asia crisis.
2: The government's 37,500 crore surface coal gasification scheme is a game changer for India's self-reliance because it would drive the shift of domestic coal into high-value synthetic gas and chemical products. This shift aggressively curbs India's heavy reliance on imports for vital commodities like LNG, urea, ammonia, and methanol, while unlocking the value of vast domestic reserves. This initiative is fundamentally significant to India's energy security and the Atmanirbhar Bharat goals through several concrete pathways, eradicating import dependencies. India currently imports over 50% of its LNG and 20% of its urea, as also 100% of its ammonia, 80 to 90% of its methanol. So by converting domestic coal into syngas, this scheme targets India's massive national gasification goals and directly replaces these foreign sources. Critical chemicals and fuels.
1: Let's now hear what Union Minister Ashwini Vaishnav had to say on coal gasification.
3: आज हम सब जानते हैं कि गैस का जितना रिक्वायरमेंट है और दुनिया भर में जिस तरह की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उस हिसाब से हम आत्मनिर्भर कैसे बने। भारत में प्रचुर मात्रा में कोयला उपलब्ध है, करीब करीब अगर देखें तो आगे के 200 साल के लिए जितना कोयला चाहिए उतना भारत में ऑलरेडी उपलब्ध है। तो उस कोयले का उपयोग करके क्या हम गैस बना सकते हैं, इस विषय पे एक अच्छा प्रयास चल रहा था, उसका फैसला लिया गया है और बहुत ही सामूहिक फैसला है, बहुत ही टाइमली फैसला है। कोल गैसिफिकेशन की स्कीम, उस गैस को जला के पावर भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उस गैस से एलपीजी का इक्विवेलेंट फॉर्म भी बना सकते हैं और उस गैस से हम फर्टिलाइजर का मैन्युफैक्चरिंग हो, कई सारे जो पेट्रोकेमिकल्स के माने जो एक रिफाइनरी में बाय प्रोडक्ट्स होते हैं उसी तरह के बाय प्रोडक्ट्स यहाँ पर भी निकाले जा सकते हैं। तो एक तरीके से कोयले से गैस, गैस से फर्टिलाइजर, कोयले से गैस, गैस से पावर, कोयले से गैस, गैस से कई तरह के केमिकल्स, ये बनाने की ये प्रोसेस है और ये बहुत बड़ा फैसला है क्योंकि इस युग में हमें जितना आत्मनिर्भर बने उतना अच्छा है और उतना ही देश के लिए भविष्य का बड़ा इंश्योरेंस बनता है।
1: There is also an appeal by Prime Minister on taking measures as we took during the COVID-19 pandemic.
0: देश का हित, देश के लोगों का हित, ये हमारे लिए सर्वोपरि है। आप देख रहे हैं कि इस समय वैश्विक स्तर पर किस तरह की चुनौतियां हैं। वेस्ट एशिया में संकट की स्थितियां लगातार बनी हुई है। युद्ध के इस माहौल का बहुत नकारात्मक असर पूरे विश्व पर पड़ा है और भारत भी इससे प्रभावित हो रहा है। देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य में हमें अपना संयम भी बढ़ाना होगा, हमें मिलकर संसाधनों को बचाना होगा, देश के हितों की रक्षा करनी हो। जिस तरह कोरोना काल में हमने संकटों का मिलकर सामना किया था, वैसे ही देशभक्ति की भावना से हमें फिर एक बार भारत को इन वैश्विक संकटों से निकालने के लिए एक साथ खड़ा होना ही होगा।
1: Prabhu Dayal ji, why are we on a war footing right now?
2: Our Prime Minister,

0: नमस्कार, मैं हूं कैलाश खेर और आकाशवाणी के सभी श्रोताओं को मेरा बारंबार प्रणाम। और भारत की सेना को समर्पित ये मेरा गीत भारतीय सेना, जो तीनों सेनाओं को समर्पित है, हर देशवासी को समर्पित है तथा भारत के हर सैनिक को समर्पित है, पैरामिलिट्री के अर्धसैनिक बलों के हर सैनिक को समर्पित है, रक्षा मंत्रालय से लेकर देश के एक एक नागरिक को ये गीत समर्पित है। हमारे देश की भावनाओं के अनुरूप हमारी भारत की सेनाओं के गौरव का गान और स्तुति ही यह गीत है। रग रग में जोश भर देने वाला यह गीत हमारे हर भारतीय को समर्पित करता हूं। मैं हूं आपका कैलाश खेर।
1: अदम्य शक्ति एवं शौर्य की पहचान है भारतीय सेना। जल थल गगन की रक्षा का वरदान है भारतीय सेना। हर संकट का समाधान है भारतीय सेना। भारत का गौरव है, स्वाभिमान है भारतीय सेना।

0: आज पूरी दुनिया हमारी सेना की वीरता और मारक क्षमता की बुरी बुरी प्रशंसा कर रही है।
1: हो चुनौती कोई भी, कैसी भी मुश्किल, हर जगह

0: ശാസ്ത്രീയ സംഗീതക്ക് നമ്മുടെ ശ്രുണത്തിലെ ശാസ്ത്രീയ ഗായനം ശില്പിത്തിലെ ഉസ്താദ് യൂനുസ് ഹുസൈൻ ഖാൻ ശില്പി പരിവേഷണം കൊല്ലെ രാഗ് ബെഹാഗഡ ആകാശവാണി ഭവാനി പട്ടണ പ്രഥമെ ഹിന്ദിയെ പരെ പരെ ഇംഗ്രാജിലെ സംവാദ ശുണു റിലേ കൂടി പ്രചാര കൂടി ആകാശവാണി ദില്ലി രു
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। भारत और साइप्रस के बीच आतंकरोधी नवाचार और प्रौद्योगिकी, उच्च शिक्षा और अनुसंधान तथा सांस्कृतिक सहयोग पर संयुक्त कार्य समूह की स्थापना सहित विभिन्न क्षेत्रों में कई समझौते हुए। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइट्स के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग मजबूत करने पर चर्चा की। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया।
2: आज हम अपने विश्वसनीय संबंधों को एक

0: स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के रूप में एलिवेट कर रहे हैं। भारत और साइप्रस के बीच यह स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप दोनों देशों के फाइनेंशियल और सर्विसेज हब को जोड़कर कॉमर्स के लिए कैपिटल अनलॉक करेगी। यह साइप्रस के इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी और एग्रीकल्चर सेक्टर में भारतीय कंपनीज के लिए नए अवसर प्रदान करेगी और भारत के तेजी से बढ़ते शिपिंग और मैरिटाइम क्षेत्रों में नया निवेश लेकर आएगी।
1: श्री मोदी ने कहा कि साइप्रस के साथ रक्षा सहयोग भी बढ़ा है। साइप्रस के राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले एक वर्ष में दोनों देशों के आपसी संबंध और यूरोपीय संघ तथा भारत के संबंधों में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। दोनों देश आतंकवाद से निपटने के लिए संयुक्त बल स्थापित करने पर सहमत हुए। विदेश मंत्रालय में पश्चिमी मामलों के सचिव सिबी जॉर्ज ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों नेताओं ने सीमा पार से आतंकवाद सहित हर प्रकार के आतंकवाद से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई है। साइप्रस ने आतंकवाद से मुकाबले में भारत के साथ एकजुटता व्यक्त की। श्री जॉर्ज ने बताया कि दोनों नेताओं ने कई क्षेत्रों में संपर्क सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की।
2: Discussions focused on enhancing cooperation.
3: बातचीत में मुख्य रूप से व्यापार और निवेश, रक्षा, समुद्री सुरक्षा, वित्तीय संपर्क, प्रौद्योगिकी और नवाचार, गतिशीलता, शिक्षा, संस्कृति तथा भारत यूरोपीय संघ सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी विचार साझा किए। उन्होंने आतंकवाद के सभी रूपों से निपटने की प्रतिबद्धता दोहराई।
2: In all its forms and manifestations, including cross-border terrorism.
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स का स्वागत किया। उन्होंने उनके सम्मान में भोज का भी आयोजन किया। राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलाइड्स और उनके प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि भारत और साइप्रस के बीच विश्वास और सद्भावना पर आधारित घनिष्ठ संबंध हैं। राष्ट्रपति मुर्मू ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारत साइप्रस संबंध एक नए चरण में प्रवेश कर रहे हैं, जिसमें रक्षा और सुरक्षा, प्रौद्योगिकी, वित्तीय सेवाओं, संपर्क और समुद्री सहयोग जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में सहयोग का विस्तार हो रहा है। केंद्र सरकार स्मार्ट बॉर्डर परियोजना लागू करेगी तथा बांग्लादेश और पाकिस्तान से लगी पूरी सीमा को अभेद्य बनाएगी। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि स्मार्ट बॉर्डर अवधारणा के अंतर्गत विभिन्न प्रौद्योगिकी के एकीकरण का कार्य प्रगति पर है। ओडिशा के चांदीपुर एकीकृत परीक्षण रेंज से आज कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल अग्निवन का सफल परीक्षण किया गया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि परीक्षण सभी प्रचालनगत और तकनीकी मानकों पर सटीक उतरा। ये सफल परीक्षण भारत की रणनीतिक रक्षा तैयारियों में एक अन्य मील का पत्थर है, जो देश की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माउंट एवरेस्ट पर तिरंगा फहराने के लिए आईटीबीपी की पहली महिला पर्वतारोहण टीम को बधाई दी है। श्री शाह ने कहा कि कठिन भूभाग और प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों का सामना करते हुए इस शानदार जीत को हासिल करके टीम ने आईटीबीपी के राष्ट्र सर्वोपरि के सिद्धांत को सार्थक कर दिखाया है। आईपीएल क्रिकेट में आज हैदराबाद में सनराइजर्स हैदराबाद ने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 256 रन का लक्ष्य दिया है। ताजा समाचार मिलने तक बेंगलुरु ने 14 ओवर में 3 विकेट पर 139 रन बना लिए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
4: This is Akashvani, the news read by Navneet Adhikari. Prime Minister Narendra Modi and Cyprus President Nikos Christodoulidas today called for strengthening multilateral efforts to combat terrorism and the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. The joint statement on the state visit of the Cyprus president said both leaders urged for strong and concerted action against all UN and EU designated terrorist and terrorist entities, including those under 1,267 UNSC sanctioned committees. They underline the need for cooperation to counter violent extremism and